आए कर कृपा आप मिलावे राम मोको हर जन मेल मन पावे अम्यो अम्यो हर सह मीठा मिल संत जना मुख पावे रखाओ हर के लोग राम जन उत्तम मिल उत्तम पदवी पावे हम होत तेरी दाग दासन की मेरा ठाकुर खुशी कराए सेव जन सेवे से वड़पागी यदि मंत्र प्रीत लगावे बिन प्रीति करे बो बाता कूड़ बोल कूड़ो फल पावे मोको तार कृपा जग जीवन दाते हर संत पगी ले पावे औ काटो काड बाढ़ सिर राखो जित नानक संत चढ़ आवे राम कली महला चौथा जीवड़ पा हुए वड़ मेरे जन मिलदिया ढिल न लाइये हर दिन अमृत कुण सर नीके वड़पागी तित ना भाइये राम मोको हर जन कारे लागे हो पानी पखा पीसो संत आगे पग मल मल तूर मुख लाई गये रगाओ हर दिन वड्डे वड्डे वड़ ऊचे जो सदगुर मेल मिलाए गे सदगुर जेवड़ अवर न कोई मिल सदगुर पुरख तिहाई गे सदगुर शरण परे तिन पाया मेरे ठाकुर लाज रखाई गे एक अपने सुहाए आए बह गुर आगे ज्यो बगल समाध लगाए गे बगला काग नीच की संगत जाए करंग बिखू मुख लाई गे नानक मेल मेल प्रसंगत मिल संगत हंस कराइये राम कली महला चौथा सदगुर दया करो हर मेलो मेरे प्रीतम प्राण हर राया हम चेरी होए लगे गुर चरणी जिन हर प्रा मार्ग पंथ दिखाया राम मैं हर हर नाम मन पाया मैं हर बिन अवर न कोई बेली मेरा पिता माता हर सिखाया रखाओ मेरे एक प्राण न रहे बिन प्रीतम बिन देखे मरे मेरी माया तन तन वड़ भाग गुर सरणी आए हर गोबिंद दर्शन पाया मैं अवर न कोई सूझे बूझे मन हार जब जपूज पाया नाम हीन तेरे से नगटे तिन कस कस नक वढाया मोको जग जीवन जी वाल लै स्वामी बिन अंतर नाम साया नानक गुरु गुरु है पूरा मेरे सतगुरु नाम तिहाया राम कली महला चौथा सदगुर दाता वड्डा वड पुरख है जित मिले हर उर तारे जी दान गुर पूरे दिया हर अमृत नाम समारे राम गुर हर हर नाम कंठ तारे गुरम कथा सुनी मन पाई तन तन वड पाग हमारे रखाओ कोट कोट ते तीस त्यावे ताका अंत न पावे पारे हिरदे काम कामनी मांगे हिरद मांगे हाथ पसारे हर जस जप जप वड़ा वडेरा गुरमुख रखो उरतारे जे वड़पा होवे ता जपिए हर पौजल पार उतारे हर जन निकट निट हर जन है हर राखे कंठ जन तारे नानक पिता माता है हर प्रभ हम बारक हर प्रतपारे राग राम।

मैं मान कलाला, तुम देव होते संक न मान हो, हम पुंचे सदा निहाला, हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देव हो खीरा, हम खिल है सब लाड लडाव है, तुम स गुणी गहीरा, तुम पूर्ण पूरे है संपूर्ण, हम पी संग अघाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहया।

आखार मंडली तरण सुबाई ऊपर गगन चंदोआ पनम चूला करत अकेला जल ते उपत हुआ पंच तत् कर पुत्रा कीना किरत मिलावा हुआ चंद सूरज दु जरे चिरागा चौ कुंड पीतर राखे दस पातो पंच संगीता एक पीतर साते पिन पिन हुए पाद दिखावे सभो निरारी पाखे तार कर नृत होवे दिन राती हरकड़ वाजे तूरा एक नचावे एक पवावे एक आए जाए हुए तूरा।

गर्भ है परया, जप नाथ दिन रहनाई, तेरी खिंता दो दिहाई, रहाओ गहरी बिपूत लाए बैठा ताड़ी, मेरी तेरी मुंद्रा ताई, मांगे टूका तृप्त न पावे, नाद छोड़ जाचे लाज न आवे, क्याल चित जोगी आसन तेरा, सिंगी वाजे नित उदासेरा, गुर गुर कीते बूझ न पाई, फिर जोगी आवे जाई, जिसन हुआ नाथ कृपाला, रह रास हमारी गुर गोपाला, नामे खिंता नामे बस्तर, जन नानक जोगी हुआ अस्थिर, क्यों जप्या नाथ दिन रहनाई, हुन पाया गुर गोसाई, रहाओ दूजा राम कली महला पनवा, करन करा मन सोई आना दिसे कोई, ठाकुर मेरा सूट सुजाना, गुरमुख मिलिया रंग माना, ऐसो रे घर समीठा, गुरमुख किने विरले डीठा, रहाओ निर्मल जोत अमृत नाम, पीत अमर पय ने काम, तन मन शीतल अग्नि निवारी, अंधरू प्रगटे संसारी, क्या देवो जा सब कुछ तेरा, सब बलिहार जाओ लख बेरा, तन मन जियो पिंड दे साजिया, गुर कृपा ते नीच निवाजिया, खोल किवारा महल बुलाया, जैसा सा तैसा दिखलाया, कहो नानक सब पड़दा टूटा, हौ तेरा तू मैं मन मूठा, राम करी महला पंजवा, सेवक लायो अपनी सेव, अमृत नाम दियो मुख देव, सगली चिंता आप निवारी, जिस गुर कहो सद बलिहारी, ताज मारे पूरे सदगुर, बाजे अनघ तूरे सदगुर, रहाओ महिमा जाकी गैर गंभीर, होए निहार देज तीर, जाके बंधन काटे राय, सो नर भौर न जो नी पाए, जाके अंतर पलट्यो आप, ताको नाही दुख संताप, ला रतन से पाले परया, सगल कुटम ओ जन लै तरया, नाहिज परमना दुबदा दूजा, एको एक निरंजन पूजा, जल का देखो आप दयाल, कहो नानक प्रा मिले रसाल, राम कली महला पनवा, कंते छुटकी अपनी तारी, प्रभु की आज्ञा लगी प्यारी, जो कुछ करे सो मन मेरे मीठा, ता यो अजद नयन डीठा, हम वे जानी रे मेरी गई बलाए, वही किस निवारी ममता, गुर पूरे लियो समझाए, रखाओ कर कृपा राख्यो गुर सरना, गुर पकराए घर के चरना, बीस बिसवे जामन ठहराने, गुर पार ब्रह्म एक ही जाने, जो जो किन्नो हम तिसके दास, प्रा मेरे को सगल निवास, ना को दूत नहीं बैराई, गल मिल चाले एक पाई, जा को

चलना, राच रहो तू संग सुपना रहाओ, बाल व्यवस्था बारक अंध, पर जोबन लागा दुर्गंध, तृती व्यवस्था संचे माए, बिरध पया छोड़ चलो पछताए, किरण काल पाई दुर्लभ देहे, नाम बिहूनी होई खेहे, पशु प्रेत मुग्ध ते बुरी, तिसे ना बूझे जेन ए श्री, सुन करतार गोविंद गोपाल, दीन दयाल सदा कृपाल, तुम्हें छुड़ावो छुटके बंद, बक्स मिलावो नानक जग अंध।

अंत की बार ऊठ सिधारे ना बिना सब चूठ परानी गोविंद भजन बिन अवर संगराते ते सा माया मूठ परानी रखाओ तीर्थ नाये न उतर समायल कर्म धर्म सब हो में फैल लोक बिचारे गत नहीं होए ना बिहूने चल सहे रोए बिन हर नाम ना टूटस पटल सो दे शास्त्र सिमरत सगल सो नाम जपे आप जपाए सगल फला से सुख समाए राखन हारे रख हो आप सगल सुखा प्र तुम रे हाथ जित लाभ तित लागे स्वामी नानक साहेब अंतर जामी राम करी महला पंजवा जो कुछ करे तो ही सुख जाना मन असमझ सा संगपति आना डोलन ते चूका ठहराया सत महे ले सत समाया दू गया सब रोग गया प्रभु की आज्ञा।

पूर्ण पार ब्रह्म सो त्याय पूरा जिस कर्म तरन तारन प्राते रो नाओ एका शरण गही मन मेरे तुद बिन दूजा ना ही ठाओ रहाओ। जप जप जीवा

सागर तरियो बाशर खोज खेद न पायो नए पुनरोज सिंध समायो कट के माघे करण हार कहो किस अज जनाघे जो छूटो तो जाए पयाल जो कढ़ो तो नजर निहाल पाप पुन हमरे बस नाहे रसक रसक नानक गुण गाहे राम कली मोहल्ला पंजवा ना तन तेरा ना मन तोहे माया मोहे बेआ पिया तोहे उदम करे गाडर जो शेल अचिंत जाल काल चक्कर पेल हर चरण कमल सरनाए मना राम नाम जप संग सहाई गुरमुख पावे साज तना रहाओ ऊने काज न होत पूरे काम क्रोध मद सदगी चूरे करे विकार जीरे के ताई गाफल संगनत हुआ जाई तरत तो अनक छल जाने कौडी कौडी को खाग सिर छाने जिन दिया तसे न चेते मूल मिथ्या लोभ न उतरे सूल पार ब्रह्म जब पए दयाल जो मन हुआ सादरवाल।

गोविंद गुण गावत, साध संग दुख जाए रघाव, जाके राम बसे मन माही, तुझन दुत्तर पेखत नाही, सगले ताशवारे अपने, हर हर नाम रसनित जपने, जिसके मस्तक हाल गुर तरे, तो दास अंदेशा काहे करे, जन्म मरण की चूकी कान, पूरे गुर ऊपर कुर्बान, गुर परमेश्वर पेट निहाल, तो दर्शन पाए जिस होए दयाल, पार ब्रह्म जिक्र पा करे, साध संग सो पव जलता रहे, अमृत पीवो साध प्यारे, मोह खूजल साते दरबारे, अंध करो ताज सगल विकार, नानक हर जप उतर हो पार, राम कली महला पंजवा, ईंधन ते बैसंतर भाग गए, माटी को जल दह दिस जागे, ऊपर चरण तले आकाश, कड़मे सिंध कियो परगास, ऐसा समर्थ हर जीव आप, निमकन बिसरे जी भगतन कह, आठ पैर मन

जन्मे त्यो मरण भया, ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागे, नाम सार भव जल पाया, तन तन देखत गर्भ गया, तनक कामनी सुखेत वधाए, की नाम सार है परम गया। रहाव जत स संजम सील ना राखिया, प्रेत पिंजर में कष्ट पया, उन दान इसनान ना संजम, सास दिन बाद जया, लाल तिलागे नाम सारियो, आवत जावत जन्म गया, जा जम ताए केस गए मारे, सुरत नहीं मोकाल गया, ऐस निंदा ताद पराई, हृदय नाम ना सर्व दया, बिन गुर शब्द ना गत पद पावे, राम ना बिन नरक गया, खिन में वेश करे टुआ ज्यो, मोह पा में गलत गया, एत पुद माया देख बसारी, मोह माया के मगन पया, करे विकार विथार कनेरे, तोरत शब्द बिन परम पया, हमें रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया, सुख संपत को आपद देखे, सागत मान अब महान भया, जिसका इहो तान तान सो फिर लेवे, अंतर से साधु पया, अंत काल किस साथ ना चाले, जो दिसे सब तिसे माया, आद पुरख अपरम परसो प्राभ, हर नाम हृदय ले पार पया, मुए को रोवे किसे सुनावे, पय सागर असराल पया, देख कुटांब मायाग्रे मंदर, सागत जंजाल पराल पया, जहाँ आए ता तने पठाए, प्याले तने बुलाए लया, क्यों कुछ करना सो कर रहया, बक्सन हारे बक्स लया, जिन तो चाख्या राम रसायन, तिरकी संगत खोज पया, रिद्ध सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया, मुक्त पदार्थ शरण पया, दो सो गुरमुख सम कर जाना, हरक सोग ते भ्रगत पया, आप मार गुरमुख कर पाए, नानक सह समाए लया, राम कली दक्षिणी मोहल्ला पहला, जत स संजम साज दृढ़ाया, सा सदर हसीना, मेरा गुरदयाल सदा रगलीना, ऐस रह एक लिव लागी, ताचे देख पतीना रखाओ, रह गगन पुर दृढ़ समय सार।

ताहु रोग सोग परमीजा, ताहु पवन तार जात बेगाए, संत बेगावे कीर्तन गाए, ताहु बेगावे दिन रैन चाल, ताहु बेगावे सो पिड़माल, ताहु बेगावे बाल पढ़ावत, संत बेगावे हर्ष गावत, ताहु बेगावे नट नाटक।

संतो कछु अकथ कहानी। ए मन चंचला चितराई किने न पाया, चितराई न पाया किने। तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी, जेन एद परम फुलाया। माया ता मोहनी तने कीती जिठ गोली पाईया, कुर्बान कीता से विटो जिन वो मीठा लाया। कहे नानक मन चंचल चितराई किने न पाया, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। यो कुटंब तू जे देखदा चले नाही तेरे नाले, साथ तेरे चले नाही इस नाल क्यों चित लाई है। ऐसा काम मूले ना कीचे जित अंत पछोताई है। सगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले। कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले, अगम अगोचर तेरा अंत न पाया। अंतो न पाया किने तेरा, अपना आप तू जान है। जी जंत सब खेल तेरा, क्या को आख वखाण है। आख है ता वेख है, सब तू है जिन जग त्यो पाया। कहे नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत न पाया। सुर नार मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन मसाया। जी जंत सब तुत उपाय, एक वेग पर सुने आया। लभ लोभ अहंकार चूका, सगुरु पला पाया। कहे नानक जिसनु आव तुठा, तिन अमृत गुर ते पाया। भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी। बेखम मार्ग चलना, लभ लोभ अहंकार तत सुना। बहुत ना ही बोलना, खन्यो तिखी वालो निकी। एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजया। हर वासना समाणी, कहे नानक चाल भगतां जुग हो जुग निराली। ज्यों तू चलाए तिव चले स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाए तिवे चले, जिन्ना मार्ग पावे। हर कृपा जिन नाम लाए, छे हर हर सदा त्यावे। जिसनू कथा सुनाए अपनी, छे गुरुद्वारे सुख पावे। कहे नानक सच्चे साहेब क्यों पावे तिवे चलावे। यो सोहिला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सोहिला। सतगुरु सुनाया यो तिनके मन वसया, जिन तुरो लिखया आया। एक फिरे कनेरे करे गल्ला, गल्ली किने न पाया। कहे नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया। पवित होए से जना जिन्नी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटाम्ब सहत स्यों, पवित संगत सबाईया। कहंदे पवित सुन दे पवित, से पवित जिन्नी मन मसाया। कहे नानक से पवित जिन्नी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज न उपजे विण सहज, सहसा न जाए न जाए सहसा किते संजम। रहे कर्म कमाए।

प्रसाद साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा जानीड़ा हर जानीड़ा नैन अलोयाड़ा हर जानीड़ा नैन अलोया कड़कड़ सोया आत अमृत प्रे गूड़ा नार होवंदा लय न सकंदा तो न जाने मूड़ा माया मन माता हो ची बाता मिल न जाई परम तड़ा ओ नानक गुरबिन नाही सूझे हर साजन सब के निकट खड़ा।

काटन पय हरण तूसागर हर राय दीन दयाल दुख पंजनो नानक नीत त्याय संत जस गावोड़ पागी हो कर कृपा भगवंत जियो रुत्ती महामूर्त कड़ी गुण उचरित सोभावंत जियो गुण रंग राते तन तेजन जिनी एक मन त्याया सफल जन्म पया तिनका जिनी सो प्रापाया ओ निदान ना तुल किरिया हर सर्व पापा हंत जियो बिनवंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण रहंत जियो श्लोक उदम अगम अगोचरो चरण कमल नमस्कार कथनी सा तुद पावसी नानक नाम आधार संत सरण साजन परो स्वामी सिमर अनंत तू केते हरियाथिया नानक जप भगवंत संत रुत सरस बसंत महा चेत वैसाख सुख महा जियो हर जियो नहो मिलिया मौलिया मंतन सह जियो कर नहो नेचल अंध सखिये चरण कमल पर फुलिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमुलिया वड़पाग पाया दुख गवाया पई पूर्ण आस जियो बिनवंत नानक शरण तेरी मिटी जम की त्रास जियो श्लोक सा संत मिन प्रमोई करती कर्म अनेक कोमल बंधन बांधिया नानक कर्म है लेख जो पाने से मिलिया विछोड़े पिया नानक प्रसरणागति जाकावड़ प्रताप संत ग्रीख मरुत अत गाकड़ी जेठ अखाड़े काम जियो प्रेम शोध वागणी दृष्ट न करी राम जियो ने दृष्ट आवे मर्त हावे महागार मुठिया जल बाज मछली तड़फड़ावे संग माया रुठिया कर पाप जोनी पय पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानक ओड तेरी राग पूर्ण काम जियो श्लोक सदा लागी संग प्रीत में एक तिल रहन न जाए मन तन अंतर राव रहे नानक सह सुपाए कर गैली नी साजने जन्म जन्म के मीत चरने दासी कर लई नानक प्रभित चीत शंत रुत बरस सुहेलिया सावन भादवे आनंद जियो तन उन उठे जल तल पूरिया मकरंद जियो प्रापूर रहया सर्वठाई हर नाम नावनित ग्रे परे सिमर स्वामी अंतर जामी और समूहा सब तरे प्रे रंग जागे नय छिद्र लागे किरपाल साधबक सिंध जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया सदा मन पावंद जियो श्लोक आस प्यासी मैं फिरो ता पेखो गोपाल है कोई साजन संत जन नानक प्रा मेलन हार बिन मिलबे सांत न उपजे तिल पल रहन न जाए हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए शंत रुत सरद अडम्बरो असूकत के घर प्यास जियो खोजंती दर्शन फिरत का मिल गए गुण तस जियो बिन कंत प्यारे नै सूख सारे हार कंगन त्रिग बना सुंदर सुजान चतर बेती सास बिन जैसे तना ईत पुत दैदस अलोकन मन मिलन कीपा प्यास जियो बिनवंत नानक तार कृपा मिल हो प्रगुण तस जियो श्लोक जलम जी शीतल पय मन तन उपजी सा।

कचियले सुन कहां कर वासो ज्ञान की मुद्रा कमन कचियले घट घट कमन निवासो काल का ठीका क्यों जिलाईले क्यों निरभो कर जाइए सहे संतु का आसन जाने क्यों शेदे बैराइये गुर के शब्द होमे बिख मारे ता निरकर हो गए वासो जिन रच रचिया तेस शब्द पछाण नानकता का दासो कहां ते आवे कहां यो जावे कहां यो रहे सुमाई एस शब्द को जो अर्थ आवे

हुक्मे रहे समाई पूरे गुरते साज कमावे गत मित सब दे पाई आद कौ बिस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकल्पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले धड़कड़ साचा सर्ब जिया गुर बचनी अवगत समाइये तत निरंजन सहज लहे नानक दूजी कारना करनी सेवे सिख सो खोज लहे हुक्म बिस्माद हुक्म पछाणे जी जुत सा जाने सोई आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगतो निर्मायल उपजे निर्गुणते सरगुण।

तू सच्ची नाई। श्लोक कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोए, राम कसौटी सो सहे, जो मर्जी वा होए मोहल्ला तीजा। क्यों कर यो मन मारिए, क्यों कर मृतक होए, कया शब्द न मानई, होमे छड़े न कोए, गुर प्रसादी होमे छुटे, जीवन मुक्त सो होए। नानक जिसनु बख्से तिस मिले, तिस बिघन ना लागे कोए मोहल्ला तीजा। जीवत मरना सबको कहे, जीवन मुक्त क्यों होए, पय का संजम जे करे, दारू पाओ लाए, अनदन गुण गावे सुख सहज, बिख पवजल नाम तरे, नानक गुरमुख पाईए, जा को नदर करे पौड़ी, दूजा पावर चायोन, त्रै गुण वरतारा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन।

पूला सब तीर्थ गह, ओ तपा कैसे परमगत लह, गुर प्रसादी को सच कमावे, नानक सो तपा मोखंतर पावे महला तीजा, सो तपा ये ओ तप का ले, सदगुर नु मिले शब्द समाले, सदगुर की सेवा यो तब प्रवान, नानक सो तपा दरगह पावे मान पौड़ी, रात दिस उपायन संसार की वर्तन, गुरमति कड़चानना आनेर बिनासन, हुक्मे ही सब साजियन रव्यासा वण त्रेण, सब कुछ आपे आप है गुरमुख सदा हर पाण, सब देखी सोजी पई सच्चे आप बुझाई, वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई, श्लोक महला तीजा अभ्यागत ए न आखियन, जिनके चित में परम ते दे दिते नानका, ते हो जेगा तर्म आपए निरंजन परम पद, ताका भूखा होए जिसका भोजन नानका, विरला पाए कोए महला तीजा, अभ्यागत ए न आखियन, जे पढ़ कर भोजन करेन उदरे कारण अपने बैले पेह करेन, अभ्यागत से ही नानका जी आत्म गौन करेन, पाल लहन सो अपना निरकर रहन करेन, पौड़ी अंबर तरत बिछोड़ेन वे सच्चा असराओ, कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ, सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच सुनाओ, सच्चा आप तगत सच्चा बै सच्चा करे न्याओ, सब सचो सच वर्तदा गुरमुख अलख लखाई, वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई, श्लोक महला तीजा रैनायर माय अनंत है पूड़ी आवे जाए, भाणे चले अपने बहुती लय सजाए, राय नायर में सब किस है कर्मी पल्ले पाए, नानक नौनद पाई है जे चले तसे रजाए, महला तीजा है जे सतगुर ना सेवे हो विच होमे जन्म विनाश, रसना हरसना चखे हो कमल न होयो परगास, बिख खादी मन मुख मोआ माया मोहे विनाश, एक सहर के नाम वेण त्रिग जीवन त्रिगवास, जा आपे नदर करे पर सच्चा ता हो वे दसन दास, ता अनदन सेवा करे सदगुरु की कभे न छोड़े पास, जो जल में कमल अलिप तो वर्त है त्यों विचे गिरे उदास, जन नान करे कराया सबको क्यों पावे ते भर गुण तास, पौड़ी छत्ती जुग गुबार सा आपे ग्रंथ कीनी, आपे सृट सब साजियन आप मत दीनी, सिमरत सास्त साजियन पाप पुन ग्रंत गणीनी, जिस बुझाए सो बुझसी सच्चे शब्द पतीनी, तब आपे आप वर्तदा अपे बक्स मिलाई, वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई, श्लोक महला तीजा यो तन सबो रत है रत बिन तन न होए, जो से रत अपने तेन तन लोभ रत न होए, पए पए तन खीन होए लोभ रत विच हो जाए, ज्यों बैसंतर तात सुध होए त्यों हरका पाओ दुर्मत महल गवाए, नानक तेजन सोने जो रत्ते हारंग लाए, महला तीजा राम कली रामन वसया ता बनया सीगार, गुर के शब्द कमल बिगसया ता सौंपया भगत पंडार, परम गया ता जा गया चूका अज्ञान अंधार, देसनु रूप अत अगला जिस घर नाल प्यार, सदा रवे तेरे अपना तोबावंती नार, मनमुख सीगार ना जाननी जसन जन्म सवहार,
फिर घर भक्ति सीगार कर नित जम्मे हुए खुवार सह सारे विच सोभ ना पाए नी अगे जे करे तो जाने करतार नानक सच्चा एक है दो बच गए संसार चंगे मंदे आप लायन सो करन जे आप कराए करतार महला तीजा बिन सतगुर सेवे साथ न आवई दूजी ना ही जाए जे वो तेरा लोचिए बिन कर्मा पाया ना जाए अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुवाए तिन जम्मन मरण ना चुकई होमे विच दुख पाए जिनी सतगुर सिउ चित लाया सो खाली कोई ना है तिन जम की तलब ना हो गई ना ओए दुख सुखा है नानक गुरमुख उबरे सच्चे शब्द समागे पौड़ी आप अलिप्त सदा रहे होर तंदे सब ताव है आप नेचल अचल है होर आव है जाव है सदा सदा घर त्याई है गुरमुख सुख पाव है निकरवासा पाई है सच सिफत समाव है सच्चा गैर गंभीर है गुर शब्द बुझाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा सच्चा नाम त्याए तू खबो वरते सच नानक हुक्मे जो बुझे तो फल पाए सच कथनी बदनी करता फिरे हुक्म ना बूझे सच नानक हर का पाणा मन्ने तो भगत होए विण मन्ने कच्चन कच्च महला तीजा मन मुख बोल ना जाननी ओना अंदर काम क्रोध अहंकार ओए थाओ कथाओ ना जाननी उन अंतर लो विकार ओए अपने स्वाए आए भय गल्ला करे ओ ना मारे जम जिंदार अगे दरगे लेखे मंगे मार खुआर कीचे कूड़ियार ए कूड़े की मल क्यों उतरे कोई कड्डो यो विचार सतगुर मिले त नाम दड़ाए सब केल कट्टन हार नाम जपे नाम आराध ते जन को करो सब नमस्कार मलकूड़ी नाम उतारियन जप नाम हुआ सचियार जन नानक जिस दे ए चलत है सो जीवो देवन हार पौड़ी खुद जेवड़ दाता नाग किस आग सुनाई है गुर प्रसादी पाए जितो होम में जाइए रस का सादा बार सच्ची वडे आइए जिसनु बख्शे तिस दे आप लय मिलाइए तट अंतर अमृत रख्यों गुरम किसे पे आई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा पाबाणियां कहानियां उत सुपुत करेन जे सतगुर पावे सो मन लैन सेई कर्म करेन जाए पुछो सिमरत सास्त प्यास सुख नारद बचन सब सृट करेन सच्चे लाए सच लगे सदा सच समालेन नानकाए से प्रवाण पए ते सगले कुल तारेन महला तीजा गुरु जिना का अंगला सिख पी अंधे कर्म करेन ओए पाणे चलन अपने निर झूठो चूड़ बोलेन कूड़ कु सत कुमान दे पर निंदा सदा करेन ओए आ डुबे पर निंदगा सगले कुल डोबेन नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन पौड़ी सब नदरी अंदर रखद जेती सिट सब कीती एक कूड़ कु सत लायन मनमुख विभूति गुरमुख सदा त्याई है अंदर घर प्रीति जिनको पोते पुन है तिन वात से पीती नानक नाम त्याई है सच सिफत सुनाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤੀ ਪਾਪ ਕਰ ਸਤ ਕਮਾਹੇ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਕਰ ਦੇਵਣ ਜਾਹੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਖੱਟੇ ਭਾਉ ਭਾਵੇ ਆਵੋ ਭਾਵੇ ਜਾਓ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋਏ ਆਪੋ ਆਪੇ ਪੂਜਾ ਹੋਏ ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਕੈ ਭਏ ਨਿਆਏ ਫੇਰੇ ਤਸਬੀ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਪੜ ਸੁਣਾਏ ਤੁਰਕ ਮੰਤਰ ਕੰਨ ਰੇ ਸਮਾਹੇ ਲੋਕ ਮੁਹਾਵੇ ਚਾੜੀ ਖਾਹੇ ਚੌਂਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਐਸਾ ਹਿੰਦੂ ਵੇਖੋ ਕੋਏ ਜੋਗੀ ਗਿਰਹੀ ਜਟਾ ਬਿਭੂਤ ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਰੋਵੇ ਪੂਤ ਜੋਗ ਨ ਪਾਇਆ ਜੁੱਤ ਗਵਾਈ ਕਿਤ ਕਾਰਨ ਸਿਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਕਲਕਾ ਇਹੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆਪੇ ਆਖਣੇ ਆਪੇ ਜਾਣ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਕਰ ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ ਸੂਜ ਨੇ ਊ ਪੜਗਲ ਪਾਵੇ ਤੂਤ ਪਾਏ ਕਰੇ ਬੁਰਿਆਈ ਨਾਤਾ ਤੋਤਾ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਵਿਣ ਗੁਰ ਪੀਰੇ ਉਹ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਰਾਉਦ ਸਾਏ ਉਥੇ ਕੋ ਜਾਏ ਕਰਣੀ ਬਾਜੋਂ ਪਿਸਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਘਰ ਜੁਗਤ ਦਸਾਈ ਤਿਤ ਕਾਰਨ ਕਨ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਏ ਫਿਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਵਟਾਊ ਕੀਰੀ ਆਈ ਟਿਲ ਨਾ ਕਾਊ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਸੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣੇ ਹੋਰ ਫੱਕੜ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨੇ ਸਭਨਾ ਕਾਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਕਰਣੀ ਬਾਜੋਂ ਤਰੇ ਨਾ ਕੋਏ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੇ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਹਰ ਕਾ ਮੰਦਰ ਆਖੀਏ ਕਾਇਆ ਕੋੜ ਗੜ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਜਵੇਰੀ ਗੁਰਮੁਖਰ ਨਾਮ ਪੜ ਹਰ ਕਾ ਮੰਦਰ ਸਰੀਰ ਅਤ ਸੋਹਣਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿੜ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਖੁਆਇਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨਿਤ ਕੜ ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪਾਇਆ ਜਾਈ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾ ਸਦੁਗੀਆ ਨਾ ਸਸੁਗੀਆ ਨਾ ਸਤ ਪਾਣੀ ਜੰਤ ਫਿਰ ਨਾ ਸਤ ਮੂਡ ਮੁੰਡਾਈ ਕੇਸੀ ਨਾ ਸਤ ਪੜਿਆ ਦੇਸ ਫਿਰ ਨਾ ਸਤ ਰੁੱਖੀ ਬਿਰਖੀ ਪੱਥਰ ਆਪ ਸ਼ਾਵ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਨਾ ਸਹਸਤੀ ਬੱਧੇ ਸੰਗਲ ਨਾ ਸਤ ਗਾਈ ਕਾਉ ਚਰੇ ਜਿਸ ਹਸਿੱਧ ਦੇਵੇ ਜੇ ਸੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਤ ਆਏ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੋ ਮਿਲੇ ਵਡਾਈ ਜਿਸ ਕੜ ਪੀਤਰ ਸ਼ਬਦ ਰਵੇ ਸਭ ਕੜ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਭ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਿਸੇ ਖੁਆਈ ਤਿਸ ਕੌਣ ਕਹੇ ਜਿਸੇ ਦਿਖਾਲਾ ਵਾਟੜੀ ਜਿਸੇ ਭੁਲਾਵੇ ਕੌਣ ਜਿਸੇ ਭੁਲਾਈ ਪੰਧ

आओ, मन तन हिरदे सिमर हर, आड़ पैर गुण गाओ, उपदेश सुनो तुम गुर सिखो, सच्चा ए सुआओ, जन पदार्थ सबर होए, मन में लायो पाओ, सूग सहज आनंद कणा, प्रभ जपत्या दुख जाए, नानक नाम जपत सुख उपजे।

तिस दर्द निवारणो, जितो मुठा चित तिस कदे ना हारणो, जिस मिलिया पूरा गुरु सो सर प्रतारणो, जिसनु लाए सच तिस सच संभालणो, जिस आया हथ निधान तो रहा पालणो, जिसनु इको रंग भगत सो जानणो, ओ सबना की रेण बिरही चारणो, सब तेरे चोज विड़ान सब तेरा कारणो। श्लोक महला पंजवां। उस तो निंदा नानक जी मैं हब मजाई, छोड़िया हब किस त्यागी, हबे सा कूड़ावे डिठे तो पल्ले तेंडे लागी। महला पंजवां। फिरदी फिरदी नानक जीओ हों फावी थी, बौध सावर पंदा ताहो सुख सुखाली सुती, जा गुर मिल सज्जन मैं लद्दा पौड़ी, सबे दुख संताप जा तुद्धो भुलिए, जे कीचन लख उपाप ता कही ना भुलिए, जिसनु विसरे नाओ तो निरतन खांडिए, जिसनु विसरे नाओ सो जो नी हांडिए, जिस खसम न आवे चित तिस जम डंड दे, जिस खसम न आवी चित रोगी से गणे, जिस खसम न आवी चित सो खरो अहंकारिया, सोई दुहे ला जग जिन नाओ वसारिया। श्लोक महला पंजवां। तैंडी बंदस मैं कोई ना डिठा, तू नानक मन पाणा, होल कुमाई तिस मित्र विचोले, जय मिलकंत पछाणा। महला पंजवां। पाप सुहावे जा तौ तिर जुलदे, सीस सुहावा चरणी, मुख सुहावा जा तौ जस गावे, जियो पया तो सरणी पौड़ी, मिल नारी सत्संग मंगल गाविया, तरका हुआ बंधान बौड़ना ताविया, बिनठी दुरमत दुरत सोए कूड़ाविया, सीलवंत प्रधान हृदय सचाविया, अंतर बाहर एक एक रीताविया, मन दर्शन की प्यास चरण दासाविया, तोबा बनी सीगार खसम जाराविया, मिलिया अय संयोग जांत पाविया। श्लोक महला पंजवां। हा गुण तैंडे नानक जीओ मैं कूथिए, मैं निर्गुण ते क्या होवे, तौ जेवड दातार ना कोई, जाजक सदा जाचोवे। महला पंजवां। देश जंदड़ी ऊन मझूणा,

क्या साला ही सच्चे पातशाह जा तू सुड सुजान दान जी सतगुर पावसी सो सत्ते दान नानक हंदा शतर सिर उम्मत हैरान तो टिक्का सो बहन तोई दीवान पियू दा दे जेव्या पोतरा प्रवान तन तन रामदास गुर जिन सिरिया तने सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजन हारे तारिया सिखी अते संगती पार ब्रह्म कर नमस्कारिया अटल अथाउ अतोल।

जब तब संजम गुरमुख भोगी रहाओ। बुद्ध बिपूत चढ़ावो अपनी, सिंगी सुरत मिलाई, कर बैराग फिरो तन नगरी।

निंदा पर अपवाद ना छूटे, आवा गवन होत है फुन फुन यो प्रसंग न टूटे। जे कर कथा होत हर संतन, एक निमखन की नौ मैं फेरा, लंपड़ चोर दूत मतवारे तीन संग सदा बसेरा। काम क्रोध माया मद मस्तर, ए संपे मोह माही, दया धर्म अर गुर की सेवा ए सुपन तरनाही। दीन दयाल के पाल दमुद्र, भगत बछल पैहारी, कहत कबीर पीर जन रखो हर सेवा करो तुम्हारी। जे सिमरन होए मुक्त द्वार, जाए बैकुंठ नहीं संसार, निरपो के कर बजावे तूर, अनगत बजे सदा भरपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुक्त कद नाहे रखाओ। जे सिमरन नाही ननकार, मुक्त करे उतरे।

करती है। ई सोगा ग्रह राखी अले मंदिर एक द्वार जा जाके गऊ चरावन छाडी अले पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बछरा राखी अले कहत नाम देव सुनो तिलोचन बालक पालन।

ऐसो दान नित नित है कीजे, आत्म जो निर्माल कीजे, आप बराबर कंचन दीजे, राम नाम सर तऊ ना पूजे, मने न कीजे रोस, जमे न दीजे दोस, निर्मल निर्वाण पद कीन लीजे, जस रस राय नंद, राजा मेरा राम चंद, परम में नामा तत् रस अमृत पीजे, राम कली बाणी सर्वदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपो पाव न दर्शे, लोहा कंचन हिरन हुए कैसे, जो पार सह न परसे, देव संसे गांठ न छूटे, काम क्रोध माया मद मस्तर, इन पंचो मिल लूटे रघा, हम बड कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एवद कभे ना नासी, कौरव दास सबे नी समझस, भूल परे जैसे बौरे, मुए आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे, राम कली बाणी बेणी जियो की, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, इड़ा पिंगला और सुखमना, तीन बसे इकठाई, बेणी संगम तय प्राग, मन मज्जन करे तताई, संतो तहां नरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोय, तहां नरंजन रमैया होए रघाओ, देव स्थाने क्या निशानी, ते बाजे शब्द अनाहद बाणी, ते चंदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी, उपजे ज्ञान दुर्मत शीजे, अमृत रस गगन अंतर पीजे, इस कला जो जाने पेओ, पेटे तास परम गुरुदेव, दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की काटी, ऊपर हाट हाट पर आला, आले पीतर धाती, जागत रहे सो कभू ना सोवे, तीन तिलोक समाध पलोवे, बीज मंत्र ले हृदय रहे, मनुआ उल्ट सुन में गह, जागत रहे ना अलिया पाखे, पांचों इंद्री

पच्छम फेर चढ़ावे सूर, अजर जरै सो निजर चरै, जग नास्यो गोष्ट करै, चौमुख दीवा जोत द्वार, पलु अंत मूल विचकार, सर्व कला ले आपे रहे, मन मानक रत्ना में गुह, मस्तक पद्म द्वार ले मणि, महे निरंजन तिरपवन तनी, पंच शब्द निर्मायल बाजे, तुल के चावर संख कण गाजे, दल मलदे तो गुरमुख ज्ञान, बेणी जाते तेरा नाम, राग नट नारायण महला चौथा, एक ओंकार सत नाम, तरता पुरख निरपौ निरवैर।

जप जन रामे नाम रले, राम ना जप्यो गुर बचनी, हर तारी हर कृपले रघाव, हर हर अगम अगोचर स्वामी, जान जप मिल सलल सलले, हर के संत मिल राम रस पाया, हम जन के बल बलले, परखोत मुखर नाम जन गायो, सब दाल दे दुख दलले, विच देही दोख असाध पंच तातु, हर की ये खिन परले, हर के संत मन प्रीत लगाई, जो देखे सास कमले, उनवे कान कान कन हर गरजे, मन विसे मोर मुरले, हमरे स्वामी लोच हम लाई, हम जीवे देख घर मिले, जन नानक हर अमल घर लाए, हर मिलो अंध पले, नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम सके, गुर प्रसाद दी हर नाम ते आयो, हम सतगुर चरण पखे रखाओ, उत्तम जगना जगदीसर, हम पापी सरन रखे, तुम वड़ पुरख दीन दुख पंजन, हर दियो नाम मुखे, हर गुण ऊंच नीच हम गाए, गुर सतगुर संग सके, जो चंदन संग बसे निम बिरखा, गुण चंदन के बसखे, हमरे अवगुण बिखिया बिखे के

प्रसामी तुम धुट तारे हरण के नट मोहल्ला चौथा मेरे मान जप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीशर हर त्यायो।

उमरे गुण प्रव कह न सके हम तुम वड वड पुरख वडगे जन नानको दया प्रवतारो हम सेवो तुम जन पगे। नट मोहल्ला चौथा। मेरे मान जप हर हर नाम मने जगन्नाथ कृपा प्रतारी मत गुरमत नाम बने रघाओ हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुर सुने केल भग पाप नाम हर काटे जिव खेत किसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रव जान हो हम कह न सके हर गुने जैसे तुम तैसे प्रव तुम ही गुण जानो प्रव अपने माया फास बंद बो बंदे हर जप्यो खुल खुलने ज्यो जल कुंचर तनुए बंदेओ हर चेत्यो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुग ने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानके प्रवड ने। नट मोहल्ला चौथा। मेरे मन कल कीर्त हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रतारी लग सतगुर हर जपने रगाओ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्यावे हर उड़ने जिनको तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने ए प्रपंच किया प्रस्वामी साब जग जीवन जुगने ज्यो सलल है सरल उठे बहु लहरी मिल सलल है सलल समणे जो प्रो किया सो तुम ही जान हो हमने जानी घर गहने हम बार्क कहो विपुस्त तारो हम करे प्रभु सिमरणे तुम जलनिध हर मान सरोवर।

तू रखाओ आज्ञा मान जान सुख पाय सुन सुन नाम तुहारो जियो ईगा ऊहा हर तुम ही यो गुरते मंत्र दृढ़ियो जब ते जान पाई ए बाता ताब कुशल खेम सब तीयो साध संग नानक परगासियो।

सदगुर ज्ञान मजन गए नीको मिल कल मल पाप उतारे रघाओ। संगत का गुण बहुत अदकाई परसुआ गणक उधारे पारस निपरस भय कुबजा कहो लय बैकुंठ सुधारे।

प्रहलाद जन हर नाग पकड़िया हर राखली उतराया हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया ओ जन्म मर निवार ठाकुर हर गुरमति प्रपाया हर पतत पावन नाम स्वामी ओ भगत पंजन गाया हर हार हर उतारे जन नानक नाम समाया माली गौड़ा मोहल्ला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता सत संगत मिल हर साध आया गुरमुख ब्रह्म पछाता रखाओ वडभागी गुर दर्शन पाया गुर मिले घर प्रवजाता गुरमत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर सरनाता तन तन साध जिनी घर प्रापाया तिन पूछो घर की बाता पाए लगो निद करो जुदरिया हर मिलो कर्म विदाता लिलाड लिखे पाया गुर साधु गुर बचनी मंतन राता हर प्र आए मिले सुख पाया सब केलभ पाप गवाता राम रसायन जिन गुरमत पाया तिनकी उत्तम बाता तिनकी पंक पाये वडभागी जन नानक चरण पराता माली गौड़ा मोहल्ला चौथा सब सिद्ध साधक मुनजना मन पावनी घर त्यायो अपरम्परो पार ब्रह्म स्वामी हर अलख गुरु लखायो रहाओ हम नीच मध्यम कर्म किए नहीं चेत्यो हर रायो हरियान मेल्यो सदगुरु खिन बंद मुक्त करायो प्रा मस्त के तुर लिखया गुरमती घर लिवलायो पंच शब्द दर गए बाजया हर मिलो मंगल गायो पतत पावन नाम नर हर मंद भागिया नहीं पायो ते गर्भ जो नी गालिये ज्यो डोन जले गलायो मत दे हर अगम ठाकुर गुर चरण मन मैं लायो हर राम नाम में रहो लागो जन नानक नाम समायो माली गौड़ा मोहल्ला चौथा मेरा मन राम नाम रस लागा कमल प्रगास पया गुर पाया हर जप्यो परम पो भागा रगाओ पय पाए भगत लागो मेरा हीरा मन सोयो गुरमत जागा किल बिख खीन पय सांत आई हर उतारियो वडभागा मान मुख रंग कुसुम्भ है कछुआ ज्यो कुसुम चार दिन चागा खिन मैं बिनस जाए परताप दंड तरमरा एका लागा सत संगत प्रीत साध अत गूढ़ी जो रंग मजीठ बो लागा ताया कापर चीर बो फारे हर रंग न लहे सुभागा हर चारो रंग मिले गुर शोभा हर रंग चलू ले रंगा जन नानक तिनके चरण पखारे जो हर चरणी जन लागा माली गौड़ा मोहल्ला चौथा मेरे मान भाज हर हर नाम गोपाला मेरा मातन लीन पया राम नामे मत गुरमत राम रसाला रहाओ गुरमत नाम त्यागे हर हर मन जपगे हर जपमाला जिनके मस्तक लिखिया हर मिलिया।

पदत पुनीत असंख होगे हर चरनी मन लाग हर सर तीर्थ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक भाग शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली सुन सह की एक बार।

सब नगरी में एको राजा सबे पवित्र रह थावा बाबा देवसा सच गावा जाते सहजे सहज समावा रहाव बुरा पला किस आपस ते जाने एई सगल विकारा यो फरमाया खजम का हुआ वरते यो संसारा इंद्री तात सबल कहियत है इंद्री किसते हुई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लेवलागी दुबदा तदे बेनासी जोत पाना सो सतकर मानिया काटी जमकी फासी पंत नानक लेखा मांगे कवना या चूके मन अवमाना।

दान आए, त्यागो सगला मान महत्ता, दास रेण शरणाए। कहो नानक हर मिल पे एक, महा आनंद सुख पाए। मारू महला पंजवा, कवन थान तीरो है नामा, कवन बस्त अंकारा, कवन चेन सुन ऊपर सोयो, मुक्ते सुन कर गारा। सुनो रे तू कौन कहां ते आयो, एती ना जानो केती मुदत, चलते खबर ना पायो। रघाओ सैन सीर पवन अर पानी, बजदा खिमाने प्राते, पंच तत मिल पयो संयोगा, इन मैं कवन दोराते। जिन रच रचिया पुरख विधाते, नाले हो में पाई, जन्म मरण उसी कौहाय रे, ओहा आवे जाई। वर्ण चेन नाई किश रचना, मिथ्या सगल पसारा, पंत नानक जब खेल उजार है, तब एक एक अंकारा। मारू महला पंजवा, मान मोह अर लोभ विकारा, बियो चीत ना कालेओ, नाम रतन गुण हर बनजे, लाद वखर ले चालेओ। सेवक की ओढ़ किनभी प्रीत, जीवत साहेब सेवो अपना, चलते रखो चीत रहाओ। जैसी आज्ञा की नहीं ठाकुर, तिस्ते मुख नहीं मोरियो, सहज आनंद रखियो ग्रे पीतर, उठ ओवाहू कौ दौरियो। आज्ञा मैं पूख, सोई कर सूखा,

असाध रोग उपजो तन पीतर तर तन काहू टारियो प्रा बिसत महा दुख पायो यो नानक तत विचारियो मारू महला पंजवा चरण कम प्रवरा खे चीत हर गुण गावे नीता नीत इस बिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रखाओ जाके वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार नानक गए हो साचा सोए।

परम मन का सदगुर सरणी जाए। कर्म जिसको तुरो लिखिया सोई कार कमाए, पाव लागा गोविंद सिंह काल पाई ताए। खेत मेरे जमया निखुट न कब हो जाए, पाया अमोल पदार्थ छोड़ न कत हो जाए। हो नानक सुख पाया तृप्त रहे आगाए, मारू महल्ला पंजवा फूटो आंडा परम का मने पयो परगास। काटी बेरी पगे ते गुर की नी बंद खलास, आमन जान रहे हो तब तक कड़ाहा बुझ गया। गुर शीतल नाम दियो रघाव, जब ते साधु संग पया तो छोड़ गए निगार। जिसकी अटक तिसे

माया माध मन तन संग जाता तृष्णना बूझे करत कलोला ऊनी आस मिथ्या सा बोला आवत अकेला जात अकेला हम तुम संग झूठे सा बोला पाए ठगौरी आप भुलायो नानक कीर्तन जाए मिटायो पस पंखी भूत अर प्रेता बहुबद जोनी फिरत अनेता जय जानू तय रहन न पावे थान बिहून उठ उठ फिर तावे मन तन वासना बहुत विस्तारा अहं मेव मूठो बेचारा अनक दोह अर बहुत सजाई ताकि कीमत कहन न जाई।

दीनानाथ जगत पित माया प्रभ दयाल दुख दर्द बिदारण जिस पावे तिस ही निस्तारण अंध कूब ते काढ़न हारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन धारिया महा अगन ते आप उबारिया जब तब संजम इसते किश नाही आद अंत प्रभ अगम अगाही नाम देहे मांगे दास तेरा हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा मारू महला पंजवां।

तिसै बूझ जिन तू किया प्रकरण कारण एक रखाओ केत मन में तस्यानक जोड़ सगले भेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू महला पंजवां पत पावन नाम जाकू अनाथ को है नाथ महापौजल माहे तुलहो जाको लिखे ओ मात।

गुरमति नाम उदारा, गुर पूरे पूरी मत है, पूरे शब्द विचारा, अड़सठ तीर्थ हर नाम है, किल्ब काटन हारा, जल बलोवे जल मसे, तत लोड़े अंध अज्ञाना, गुरमति जद मसीए अमृत पागे नाम नदाना, मानमुख तत ना जाननी, पशु माहे सुमाना, होमे मेरा मरी मार, मर जम्मे वारो वार, गुर के शब्दे जे मरे, फिर मरे न दूजी वार, गुरमती जग जी मनमान वसे, सब कोल उदाहरण हार, सच्चा वखर नाम है, सच्चा वापारा, लहा नाम संसार है, गुरमती विचारा, दूजे पाए कार कमावनी, नित टूटा सह सारा, साची संगत थान सच, सच्चे कर बारा, सच्चा भोजन पाओ सच, सच नाम अधारा, सच्ची बाणी संतोखिया, सच्चा शब्द विचारा, रस भोगन पात साहिया, दो सौ संघारा।

ना बिना को कछ नहीं, गुरपूरे पूरी मत कीन रहाओ। अवगुण सुबर गुण नहीं, बिन गुण क्यों कर जाओ। सहज सब सुख उपजे, बिन भागा तन नाहे। जिनके नाम ना मन बसे, से बादे दुख सहाहे। जिन्नी नाम सारिया, ते किताए संसार। आगे पासे सुख नहीं, गाडे लादे शार। विछड़िया मेला नहीं, तू कणु जमद्वार। अगे क्या जाना नाहे, मैं भूले तू समझाए। भूले मार्ग जो दसे, तिसके लागो पाए। गुरबिन दाता को नहीं, कीमत कहण न जाए। साजन देखा ता गल मिला, साच पठायो लेख। मुख तिमाणे तन खड़ी, गुरमुखे आखी देख। तुद पावे तू मन वसे, नदरी कर्म वसेख। भूख पिया सो जे पवे।

दूरे सा वास है, काटे मन पीरा, लाला गोला तनी को क्या कहो बड़े आई है, भाणे बक्से पूरा तनी, सच कार कमाइए, विछड़िया को मेल लए, गुर को बल जाइए, लाले गोले मत खरी, गुर की मत निकी, ताती सुरत सुहावनी, मानमुख मत फीकी, मन तन तेरा तू प्रभु, सज तीरक तुरकी, सच बैसन उठना, सच भोजन भाखिया, चित सच्चे वितो सच्चा, साचा रह चाखिया, साचे घर साचे रखे, गुर बचन सुपाखिया, मनमुख आलस घणो, फाथे उजाड़ी, फाथा चुगे न चोगड़ी, लग बंद बिगाड़ी, गुर प्रसादी मुक्त होए, साचे ने ताड़ी, अनहत लाला बिदया, प्रभगेत प्यारी, बिन साचे जियो जल बलो, झूठे वेकारी, बाद कारा सब छोड़िया, साची तरतारी, जिन्नी नाम सारिया,

काम क्रोध लोभ त्यागना, मांगना मांगन नीका, हर जस गुर ते मांगना, जागना जागन नीका, हर कीर्तन मैं जागना, लागना लागन नीका, गुर चरणी मन लागना, ए बिद तिसे परापते, जाके मस्तक भागना, कहो नानक तेस सब कुछ नीका, जो प्रव की शरणागना, मारू महला पंजवा, आओ जी तू आओ हमारे, हर जसो श्रवण सुनावना, रहाओ तुद आपत मेरा मन तन हरिया, हर जस तुम संगावना, संत कृपा ते हिरदय वस, दूजा पाओ मिटावना, भगत दया ते बुध परगस, दुरमत दुख तजावना, दर्शन भेटत होत पुनीता, पुनरप गर्भ न पावना, नौ निध रिद सिद्ध पाई, जो तुमरे मन पावना, संत बेरा में थाव न कोई, अवर न सूझे जावना, मुए निर्गुण को कोई न रखे, संता संग सुमावना, कहो नानक गोर चलत दिखाया, मन मध्ये हर हर रावना, मारू महला पंजवा, जीवना सबल जीवन, सोन हर हर जप सा जीवना, अरहाव पीवना जित मन आगावे, नाम अमृत रस पीवना, खावना जित भूख न लागे, संतोख सदा तृप्तीवना, पहनना रख पद परमेसर, फिर नांगे नहीं थीवना, पोगना मन मध्ये हारस, संत संत मै लीवना, बिन तागे बिन सूई आनी, मन हर भक्ति संग सीवना, मातिया हर रस में राते, बौड़ न कभू औखीवना, मिले तिस

बेणी संगम आठसठ अंक समाई है। आपे सिद्ध साधक विचारी आपे राजन पंचाकारी तख्त बहे अदली।

तख्त सचावा गुरमुख साच मिले सुख पावा साचे साचे तख्त वडाई होमे गणत गवाई है गणत गणिये सहसा जी है क्यों सुख पावे दूए ती है निर्मल एक निरंजन दाता गुरपूरे ते पद पाई है जो जुग विरली गुरमुख जाता साचा रव रहे या मन राता इसकी ओढ़ गही सुख पाया मन तन मैल न काई है जी बरसायन साचे राती हर प्रसंगी पौना प्राती श्रामण स्रोत रजे गुरबाणी ज्योति ज्योत मिलाई है रख रख पैर तरे पो तरना जात का देखो तेरी सरना दो सुख दे तुहे मन पावे कुछ की सो बने आई है।

आपे बख्श लए सुख पाए, पूरे शब्द मिलाई है। दुर्मत झूठी बुरी बुरियार, औगुणियारी औगुणियार, कच्ची मत फीका मुख बोले, दुर्मत नाम न पाई है। औगुणियारी कंत न पावे, मन की झूठी झूठ कमावे, पिर का साओ न जाने मूर्ख, बिन गुर बूझ न पाई है। दुर्मत खोटी खोट कमावे, सीगार करे पिर खसम न पावे, गुणवंती सदा पिर रावे, सदगुर मेल मिलाई है। आपे हुम करे सा विख है, एक ना बख्श लए तुर लिख है, अन दिन नाम रते सद पाया, आपे मेल मिलाई है। हो में तात मोह रस लाई, गुरमुख लिव साची सहज समाई, आपे मिल है आपे कर विख है, बिन सदगुर बूझ न पाई है। एक शब्द विचार सदा जन जागे, एक माया मोहे सोए रहे अपागे, आपे करे कराए आपे, होर करना किशु न जाई है। काल मार गुर शब्द निवारे, हर का नाम रखे उरतारे, सदगुर सेवा ते सुख पाया, हर के नाम समाई है। दूजे पाए फिरे देवानी, माया मोहे दुख माए समानी, बहुते पेख करे नहीं पाए, बिन सदगुरु सुख ना पाई है।

कंचन काया गुरमुख बूझे जिस अंतर नाम निवासी है। सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम पूजन सच आधारा। सदा त्रिवत पवित्र है पावन जित कड़ हर नाम निवासी है। हों तिन बलिहारी जो साचे लागे हर गुण गावे अनदिन जागे। साचा सुख सदा तिन अंतर रसना हर रस रासी है। हर नाम चेता अवर न पूजा एको सेवी अवर न दूजा। पूरे गोर सब सच दिखाया सच्चे नाम निवासी है। प्रम प्रोजोनी फिर आया आ भूला जा खसम भुलाया। हर जू मिले ता गुरमुख बूझे तीने शब्द अविनाशी है। काम क्रोध परे हम अपराधी क्या मोल है बोल है। नाम गुणना सेवा साधी डुबदे पाथर मेल रहे हो तुम। आपे सात नाम अविनाशी है। ना कोई करे न करने जोगा आपे करे करावे सो होएगा। आपे बख्श लहे सुख पाए सदगी नाम निवासी है। यो तन धरती शब्द बीज अपारा हर साचे सेती वणज वापारा। सहतन जम्या तोट न आवे अंतर नाम निवासी है। हर जीव अवगुण आरे नू गुण कीजे आपे बख्श लहे नाम दीजे। गुरमुख होवे सो पद पाए एकत नाम निवासी है। अंतर हर तान समझ न होई गुर प्रसादी बूझे कोई। गुरमुख होवे सो तन पाए सदगी नाम निवासी है। अन लवाओ परम पुलाई माया मोहे सुध न काई। मानवक अंधे किशु न सूझे गुरमत नाम परगासी है। मानवक होमे माया सूते अपना करना संभाले अंत विगूते। पर निंदा करे वो चिंता जाले दुखे दुख निवासी है। आपे करते कार कराई आपे गुरमुख दे बुझाई। नानक नाम रते मन निर्मल नामे नाम निवासी है। मारू महला तीजा एको सेवी सदा थिर साचा। दूजे लागा सब जा काचा गुरमती सदा सच साला ही। साचे ही साच पतीजे हे तेरे गुण बहुते मैं एक न जाता। आपे लाए लाए जग जीवन दाता आपे बगसे दे वडियाई। गुरमत यो मन पीजे हे माया लहर शब्द निवारी। यो मन निर्मल होमे मारी।

गुण में गुणी समाया, ए जग में मोह है पासारा, मानव अज्ञानी अंध अंधारा, तंदे तावत जन्म गवाया, बिन नावे दुख पाया, कर्म होवे ता सतगुर पाए, होमे मैल शब्द जलाए, मान निर्मल क्या रतन चानन, अज्ञान अंधेर गवाया, तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई, सच नाम हर हिरदे विसाई, कीमत कौन करे प्रा तेरी, तू आपे सहज समाया।

मेरी, बिनस गई हो मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में शोभ सुहाई है, जय जय कार्ज पो जगदीश है, बल बल जाई प्रभ अपने ईस है, इस बिन दूजा अवर ना दीस है, एका जगत सुबाई है, सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन राता, सेमर सेमर जीव है जन तेरे, एक अंकार समाई है, भगत जना का प्रीतम प्यारा, सबे उदाहरण खजम हमारा, सिमर ना पुन्नी सा।

लागे। जो प्रे भजन कहे तन साचे, तन कछु न समझे चंचल काचे। बहोर बोर फिर ही संग मांगे, ओ बात जाने कर हासा हे। आई आग्या फिर हो बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया। ऊर सधायो शूटर माटी, देख नानक मिसन मुहासा हे। रे मन लोभी सुन मन मेरे, सदगुर सेव दिन रास देरे। बिरसा गुर पच मोहे सागत, निगुरे गल जम फासा हे। मनमुख आवे मनमुख जावे, मनमुख फिर फिर चोटा खावे। जितने नरक से मनमुख भोग, गुरमुख लेपना मासा हे। गुरमुख सोए जे हर जियो पाया, ते कौन मिटावे जे प्रप है राया। सदा आनंद करे आनंदी, जे सिर पाओ पया गल खासा हे। हों बलिहारी सतगुर पूरे, शरण के दाते भजन के सूरे। ऐसा प्र मिलया सुखदाता, विछड़ न कत ही जासा हे। गुण निधान किस कीम न पाई, घट घट पूर रहे हो सब ठाई। नानक शरण दीन दुख पंजन, हम ऋण तेरे जो दासा हे। मारू सोल हे महला पंजवा, एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद। करे आनंद आनंदी मेरा, कड़ कड़ पूर्ण सिर सिरे नबेरा। सिर सहा के सच्चा साहेब, और नाही को दूजा हे। हरखवंत आनंद दयाला, पलट रहे प्रभ सर्व उजाला। रूप करे कर वेखे विगसे, आपे ही आप पूजा हे। आपे कुदरत करे विचारा, आपे ही सच करे पसारा। आपे खेल खिलावे तिन राती, आपे सुन सुन पीजा हे। साचा तख्त सची पातशाही, सच खजीना साचा साही। आपे सत हारे सब साचा, सच्चे सच वर तीजा हे। सच तपावस सच्चे केरा, साचा थान सदा प्रव तेरा। सची कुदरत सची बाणी, सच साहेब सो कीजा हे। एक आप तू है वड़ा राजा, हुक्म सच्चे के पूरे काजा। अंतर बार सब के जाने, आपे ही आप तीजा हे। तू वड़ रसिया तू वड़ भोगी, तू निर्वाण तू है ही जोगी। सर्व सुख सहज कर तेरे, अम्यो तेरी दृष्टि जागे। तेरी दात तुझे ते होवे, दे दान सबसे जंत लोवे। तोट न आवे पूर पंडारे, तृप्त रहे आक ही जागे। जाचे सिर साधक बनवासी, जाचे जति सती सुखवासी। एक दा तार सगल है जाज, दे दान सृष्टि जागे। करे भगत आरंग अपारा, खिन में थाप्यो था पनहारा। पारो तोल बेअंत स्वामी, हुक्म मन भगती जाहे। जे दे दर्श सोई तुद जाने, ओ गुर के शब्द सा रंग माने। चदर स्वरूप से आना सोई, जो मन तेरे पावी जाहे। जे चीत आवे सो वे परवाह, जे चीत आवे सो सचा साहा। जे चीत आवे तिस पौ केहा, अवर कहां किस की जाहे। तिस ना बूझी अंतर ठंडा, गुर पूरे ले टूटा गंडा। सोरत शब्द हृद अंतर जागी, अम्यो चोल चोल पी जागे। मरे नाही साध सद ही जीवे, अमर पया अवनासी थीवे। ना को आवे ना को जावे, गुर दूर किया परमी जागे। पूरे गुर की पूरी बाणी, पूरे लागा पूरे माए समाणी। चढ़े स्वाया नित नितरंगा, कटे नाही तो ली जागे। बारहा कंचन शुद्ध कराया, नदर सराब वन्नी सचड़ाया। परख जाने पाया सरापी, फिर नाही ताई जाए। अमृत नाम तुम्हारा स्वामी, नानक दास दा कुर्बानी। संत संग मास पाया, देख दर्शन ओ मन पी जाहे। मारू महला पंजवा सोलहे, एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद। गुर गोपाल गुर गोविंदा, गुर दयाल सदा बख्शिंदा। गुर शास्त्र सिमरत खड़कर्मा, गुर पवित्र अस्थाना हे। गुर सिमरत सब किल विख नासे, गुर सिमरत जम संग न फासे। गुर सिमरत मन निर्मल होवे, गुर काटे अपमाना हे। गुर का सेवक नरक न जाए, गुर का सेवक पार ब्रह्म त्याए। गुर का सेवक साध संग पाए, गुर करदा नित जी दा ना हे। गुर द्वारे हर कीर्तन सुनिए, सत गुर भेट हर जस मुख पणिए।
काल कलेश मिटा।

तिनकी तूड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरे नाही काहू बेरा। इनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई। एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार तजाए, ते जन को उपदेश निर्माल का, तुद बिन नाही कोई मेरा। गुर पकड़ाए प्रभु के पैरा, हों बलिहारी सदगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रा बिसरे नाही। आड़ पैर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राते, तू समरथ वडाल का। मारू महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, चरण कमल हिरदे नितारी, गुरपूरा खिन खिन नमस्कारी। तान मन अर्प तरी सब आगे, जग में नाम सुहावना, सो ठाकुर क्यो मनो विसारे, जियो पिंड दे सास सवारे। सास ग्रास समाले, करता कीता अपना पावना, जाते बिरता को नाही। आड़ पैर हर रख मन माही, साध संग पाच अचुत स्वामी, दरगे सोभा पावना। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सह सुख नौ निध। सर्व कल्याण जे मन में चाह है, मिल साधु स्वामी रावणा। सास्त सिमरत वेद बखाणी,

पूर रहया दिन राती जो जो जप सोई वड़ पागी बौड़ ना जो नी पावना जिसनु बिसरे पुरख बेदाता जलता फिरे रहे निरताता अकिरत कणे कौ रखे ना कोई नरक कोर में पावना जियो प्राण तन तन जिन साजया माद गर्भ मह रख निवाजया तेस्यो प्रीत शाड अनराता काहू सरे ना लावना तार अनुग्रह स्वामी मेरे कड़कड़ वस्ते सबन कै नेरे हाथ हमारे कछुए नाही जिस जनाए तिसे जनामना जाके मस्तक तुर लिख पाया तेसी पुरख न व्यापे माया नानक दास सदा सरणाई दूसर रवे ना लावना आग्या दूसू सब कीने अमृत नाम बिरले ही चीने ताकि कीमत कहण न जाई जड़कद ओई समावना तोई भगत सोई वड़दाता तोई पूर्ण पुरख बेधाता बाल सहाई सोई तेरा जो तेरे मन पावना मृत दूग सुख लिख पाए तेलनी बदे कटे ना कटाए सोई हुए जे करते पावे कह के आव न्यामना अंध कूबते से ही काढ़े जन्म जन्म के टूटे गंडे कृपा तारखे करे अपने मेरे साधु गोविंद त्यामना तेरी कीमत कहण न जाई अचरत रूप वड्डी वड्याई भगत दान मंगे जन तेरा नानक बल बल जामना मारू वार महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पहला वेण गाहक गुण वेतिए तौ गुण सहगो जाए गुण का गाहक जे मिले तौ गुण लाख विकाए गुण ते गुण मिल पाईए जे सतगुर माए सुमाए मोल अमोल ना पाईए वणजना लीजे हाट नानक पूरा।

उधार गुणा की रास संग्रह अवगुण कढे विडार नानक मिलिया सो जानिए गुरु न छोड़े अपना दूजे न तरे प्यार महला चौथा सागर देखो डर मरो पै तेरे डर नाहे गुर के सब संतो किया नानक बिगस्ता नाए महला चौथा चाड़ भोए थे चाल सो सागर लहरी दे ठाक ना सच्चे भोए थे जे गुर तीरक दे ते दर जाए उतारिया गुर दिसे सावधान नानक नदरी पाईए दरगे चले मान पौड़ी ने कंटक राज पुंच तू गुरमुख सच कमाई सच्चे तख्त बैठा न्याओ कर सतसंगत मेल मिलाई सच्चा उपदेश घर जापना हर स्यों बने आई ऐथे सुखदाता मन वसे अंत हुए सखा।

कोए, पूछो जाए सियाणिया दुख काटे मेरा कोए। सतगुर साचा मन वसे साजन उत ही ठाए, नानक मन त्रिवता सीए।

सोधर सेवहो ना कोए, ऐसा सदगुर लोड़ लहो जे जेवड़ अवर ना कोए, ते शरणाई छूटिए लेखा मंगे ना कोए, सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे, हृदय जिरदे सच है तन मन पी सच्चा होए, नानक सच्चे हो मन्ने है।

जग में राम नाम हर निर्मला और मैला सब आकार नानक नाम ना चेतनी होए मैले मरे गवार। महला तीजा दुख लगा बिन सेवे है हुक्म ने दुख जाए आपे दाता सुखे दा आपे देस जाए। नानक एवे जानिए सब केश तिसे रजाए पौड़ी हर ना बिना जगत है निर्थान बिन नावे तृप्त नाही दूजे परम भुलाया होमे दुख पाही बिन कर्मा किशु ना पाई है जे बहुत लोचा ही आवे जाए जम्मे मरे गुर शब्द छुटाही आप करे किसे आखिए दूजा को नाही। सलोक महला तीजा इस जग में संति तन खटिया जिन्ना सदगुर मिलया प्रवे आए सदगुर सच दृढ़ाया।

त्रिण जिस होवे आप दयाल तिस लाभ है सदगुर चरण तू होर उपाय ना लभगी अवनासी सिष्ट करण दखणे मोहल्ला पंजवां जे तू वत्ते अंगणे अब तरत सुहावी होय एक सकंते भारी मैंडी वात न पुछे कोए मोहल्ला पंजवां अबे टोल सुहावणे सौ बैठा अंगण मल पाई ना वञे बिरथड़ा जो कर आवे चल मोहल्ला पंजवां सेज विशाई कंत कू किया हब सीगार इती मंझ ना सुमावई जेगल पैरा हार पौड़ी तू पार ब्रह्म परमेसर जोन ना आवगी तू हुक्मी साजे सृष्ट साज सुमावगी तेरा रूप न जाई लखया क्यों तुझे ते आवगी तू सब मैं वरते आप कुदरत देखावगी तेरी भगत परे भंडार तोट न आवगी एह रतन जवेहर लाल कीम ना पावगी जिस होवे आप दयाल तेस सदगुर सेवा लाभगी कदे न

आपे सतवंता जति सती प्रव निर्मला मेरे हर भगवंता सा ब्रह्म प्रसार पसारे हो आपे खेलंता एह आवा गमन रचायो कर चोज देखंता इस भौड़ गर्भ ना पावगी जे देवे गुरमंता जो आप चलावे त्यों चल दे केश वसना जनता।

पंडिया कवन कुमत तो लागे बूढ़ो गे परिवार सगल स्यों आराम ना जपो अपागे रखाओ वेद पुराण पढ़े का क्या गुण खारे चंदन जस पार राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा।

कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संत तर जाएगा, अराग मारू बाणी रविदास जीओ की। एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छदर तरे रखाओ, जाकी शोत जगत को लागे, ता पर तुही ठरे, नीचे ऊच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे, नाम देव कबीर तलोचन, सदना सहन तरे, तय रविदास सुनो रे संतो, हर जीव ते सवे सरे, मारू सुख सागर सुर तर चिंता मान, काम ते भजा के रे, चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, नवृद कर तलता के, हर हर ना जब सरसना, अवर सब शाड बचन रचना रहाओ, नाना ख्यान पुराण वेद वेद, चौतीस अक्षर माही, ब्यास विचार कहो परमार्थ, राम नाम सरनाही, सहज समाध उपात रहत होए, बड़े पागल लागी, कहे रविदास उदास दास मत, जन्म मरण पै भागी, तुखारी संत महला पहला, बारे माहा एक ओ अंकार, सदगुर प्रसाद तू सुन किरत करम्मा, पुरब कमाया सिर सिर सुख सहम्मा, देसो तू पल हर जना तेरी, क्या गत मेरी, हर बिन कड़ी ना जीवा, प्रेबाज दुहेली गोए ना बेली, गुरमुख अमृत पीवा, रचना राज रहे निरंकारी, ब्राह्मण कर्म सुकर्मा, नानक पंथ निहाले सातन, तू सुन आत्म रामा, बाबी गा प्रयो बोले, कोकल बाणिया सातन सबर चोले, अंक समाणिया हर अंक समाणी, जा प्रपाणी सास अग्न नारे, नव कर थाप महल कर ऊचो, निज कर वास मुरारे, सब तेरी तू मेरा प्रीतम, निस बसर रंग रावे, नानक प्रयो प्रोचवे, बबीह कोकल शब्द सुहावे, तू सुन हरस पिन्ने, प्रीतम अपने मन तन रब तरवन्ने, कड़ी ना बिसरे, क्यों कड़ी बिसारी, हों बलिहारी हों जीवा गुण गाए, ना कोई मेरा हों किस केरा, हार बिन रहन ना जाए, ओड़ गई घर चरण निवासे, पए पवित्र शरीरा, नानक दृष्ट दीर्घ सुख पावे, गुरसबदी मन तीरा, बसे अमृत तार, बूंद सुहावनी साजिन मिले सहज सुपाए, हर स्यों प्रीत बनी, हर मंदर आवे जा प्रपावे, तन ऊबी गुण सारी, कर कर कंतर वे सुहागण, हों क्यों कंतव सारी, उन कन शाए बरस सुपाए, मंतन प्रेम सुखावे, नानक वरसे अमृत बाणी, कर कृपा कर आवे, चेत बसंत फला पावर सुहावड़े, बन फूले मंज बार, मैं फिर कर बहोड़े, फिर कर नहीं आवे तन क्यों सुख पावे, बिरे ब्रो तन छीजे, कोकल अंब सुहावी बोले, क्यों दुख अंक सहीजे, पावर भवंता फूली डाली, क्यों जीवा मर माए, नानक चेत सहज सुख पावे, जे हर वर कर तन पाए, वैसाख भला साखा वेस करे, तन देखे घर द्वार, आव हो दया करे, कर आओ प्यारे दुत्तर तारे, तुत बिन अड ना मोलो, कीमत कौन करे तुत पावा, देख दिखावे ठोलो, दूर न जाना अंतर मानना, हरका महल पछाना, नानक वैसा की प्रपावे, सुरत शब्द मन माना, माहो जेड़ पला प्रीतव क्यों बिसरे, थल तापे सर पहार, सातन बिनो करे, तन बिनो करेंदी गुणसारेंदी, गुणसारी प्रपावा, साचे महल रहे बैरागी, आवन देता आवा, निमाणी नितानी हर बिन, क्यों पावे सुख मैली, नानक जिड़ जाने थी जैसी।

तन पिर मेलो तन ओ माहे सरसी अवगुण मारी मरे न सीजे गुण मारी ता मरसी नाम भगत जे ने कर बैठे अजो तिनाड़ी आसा नानक मिलो।

चतर सुजान विधाता चंचल जगत सुबाया ज्ञान ध्यान गुण अंक समाने प्रपाणे ता पाया गीत नाद कवत कवे सुन।

तीर्थ अंतर जानिया साजन सहज मिले गुण गए अंक सुमानिया प्रीतम गुण अंके सुन प्राभंके तुद पावा सरनावा गंग जमन तैबेणी संगम सात समुंद सुमाव उन दान पूजा परमेसर जुग जुग एको जाता नानक माघ महारस हर जप।

तारे तरिये सच देव हो दीन दयाला। परमत नानक दासन दासा तू सर्व जिया प्रतपाला भारपुर तार गए अत प्यारे।

सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझाव तुखारी शांत महला चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर सबदी हौ सतगुर कै बलिहारिये। सतगुर आगे सीस पेट देओ जे सतगुर साचे पावे, आपे दया करो प्रदाते नानक अंक समावे। तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध अपरम

जिन को तुरहर लिखिया स्वामी तिन हर हर नाम आराध्या तिन के पाप एक निम्क सब लाते जिन गुरबचनी हर जापया तन तन ते जन जिन हर नाम जपया

मुन जन सब आया जिन परसया गोर सतगुरु पूरा तिन के केलबिख नास गवाया जोगी दिगंबर सन्यासी खड़ दर्शन कर गए गोष्ट टोआ प्रथम आए।

माई संत संग जागी प्रेरंग देखे जपती नाम निधानी रहाओ। दर्शन प्यास लोचन तार लागी बिसरी त्यास बडानी अब गुर पायो हुए सहज सुखदायक।

संत संग हर चरण बोहित उदरते लय मोर गर्भ कुंट मैं जिने तारियो नहीं बिखे बन मैं होर हर सगत सरन सुमरत।

इन्हीं लोग सुपारी संतो बंजिया नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चिड़िया निर्मोल छूट गई संसारी रगाओ ताते लाए तो सच लागे साचे के व्योहारी साची बस्त के

रूप रंग रेस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालो, पानी हर जाप जन्म गयो, साच शब्द बेन कहो ना छूड़स, बिरता जन्म पयो रखाओ, तन में काम क्रोध को ममता, कठिन पीर अद पारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, एन बेद तार तू तारी, बहरे करण अकल पई होची, साबद सहज नहीं बूझया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध न सूझया, रहे उदास आस निरासा, सहज ध्यान बैरागी, परमत नानक गुरमुख छूड़स, राम नाम ले।

किरतार्थ सहज ध्यान लिव लाइए मन रे राम भगत चित लाइए गुरमुख राम नाम जब हिरदे सह से ती कर जाइए रघाओ परम भेद पौ कभू न छूड़स आप जात न जानी बिन घर नाम को मुक्त न पावस डूब मोए बिन पानी धंधा करत सगली पद खोबस परम न मिटस गुवारा बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी अंधले तंद बसारा अकोल निरंजन स्यो मन मानिया मन गीते मन मूआ अंतर बहा एको जानिया।

आई। रे जन कैसो करो पुकारा, हुक्मे होआ हुक्मे वर्तारा रखाओ। यो अकार तेरा है तारा, खिन में मिनसे करतन लागे बारा, कर प्रसाद के खेल दिखाए।

होए, निकर वस्ते सहज सुभाए, गुरमुख नाम से मने आए, आपे विखे विखणहार, नानक नाम रखो उरतार, भैरो महला तीजा, कलयुग में राम नाम उरतार, बिन नावे माथे पावे शार, राम नाम दुलभ है पाई, गुर प्रसाद वसे मन आई रहाओ, राम नाम जन पाले सोए, पूरे गुरते प्राप्त होए, हर का पाणा मन से जन प्रवान।

मुन केते बिन शब्दे सुरत न पाई, त्रै गुण सबे रोग वे आपे ममता सुरत गवाई। एक आपे काड लए प्रभ आपे गुर सेवा प्रभ लाए, हर का नाम निधानु पाया सुख वसिया मन आए। चौथी पदवी गुरमुख वर्त है तेन निरकर वासा पाया, पूरे सतगुर कृपा कीनी विचों आप गवाया। एक सकी सिरकार एक जिन ब्रह्मा बिशन रुद्र उपाया, नानक नेचल साचा एकु ना ओ मरे ना जाया। पैरो मोहल्ला तीजा मानमुख दुबदा सदा है रोगी, रोगी सगल संसारा गुरमुख बूझे रोग गवावे। गुर शब्दी विचारा हर जियो

कुजलय उबार खिनमय भयान रूप निक्षा थम उपाड़ अरणागस नहीं बिदारिया प्रहलाद लिया उबार संत जना के हर जियो कार्ज सवारे प्रहलाद जन के एक ही कुर उधारे गुर के शब्द होमे बिखमारे नानक राम नाम संत निस्तारे पैरो महला तीजा आपे दैत लाए दित्ते संत जना कहो आपे राखा सोई जो

शरणागत आए भैरों मुहला पंजवां कोड़ मनोरथ आवे हाथ जा मार के संगी पांथ गंगा जल गुर गोविंद नाम जो सिमरे तसकी गत होवे तीर्त बौड़ ना जोन परमाम रखाओ पूजा जाप ताप स्नान सिमरत नाम पए ने काम राजमाल साधन दरबार सिमरत नाम पूर्ण आचार नानक दास त्यो किया विचार बिन हर नाम मिथ्या सबसार भैरों मुहला पंजवां लेपना लागो तिलका मूल झुट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल।

अरहो अराम रसायन नित उड़ पीवो हार हार हार हार रसना कहो अरहाओ कल युग में एक नाम उधार नानक बोले ब्रह्म विचार पैरों महला पंजवा सतगुर सेव सर्व फल पाए।

अवस्त जसंतर जाए बाज गुरु है परम भोलाए जिस मस्तक कर्म लिखिया लिलाट सदगुर सेवे खुले कपाट अंतर बाहर निटे सोए।

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, ना बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, ना बिना साग सड़गी चूरे।

मन प्रगट पया नाम लयत पावतन ते गया नाम लयत सगल पुरबाया नाम लयत अड़सठ मजनाया तीर्थ हमरा हर को नाम गुर उपदेशा तत् ज्ञान रखाओ नाम लयत दुख दूर पराना नाम लयत अत मूढ़ सो ज्ञाना नाम लयत प्रगट उजिया।

तू मान मूढ़ मुग्ध होए चतर सो ज्ञान सगल भयान का पौ नसे जन अपने कह हर मन बसे पार ब्रह्म प्रसूख निदान तत ज्ञान हर अमृत नाम हर कृपा संत टहले लाए नानक साधु संग समाए भैरो मोहल्ला पंजवा संत मंडल में हर मन वसे संत मंडल में दुर्ध सब नसे संत मंडल में निर्मल रीत संत संग हो एक परीत संत मंडल तहा का नाओ पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ संत मंडल में जन्म मरण रहे संत मंडल में जम किशु ना कहे संत संग हो निर्मल बाणी संत मंडल में नाम वखाणी संत मंडल का निचल आसन संत मंडल में पाप विनाशन संत मंडल में निर्मल कथा संत संग हो में दुख नसा संत मंडल का नहीं विनाश संत मंडल में हर गुणतास संत मंडल ठाकुर विश्राम नानक ओत पोत भगवान भैरो मोहल्ला पंजवा रोग कमन जा राखे आप तेजन होए ना दुख संताप जिस ऊपर पर कृपा करे जिस ऊपर ते काल पर हरे सदा सखाई हर हर नाम जे चीत आवे ते सदा सुख होवे निकट न आवे ताके जाम रखाओ जा प्यो ना सो तब किने उपाया कमन मूल ते क्या प्रगटाया आपे मार आप जीवाले अपने भगत को सदा प्रद

राम नाम रिद्ध दियो निवास सदा आनंद नानी किज सोग दुख दर्द न व्यापे रोग तब के तेरा तू करने हार पार ब्रह्म अगुण अपार निर्मल शोभा अचरज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पानी जल थर महील रविया सोए नानक सब प्रवते होए भैरो महला पंजवा मन तारा ताराम रंग चरणे सर्व मनोरथ पूर्ण करने आठ पैर गावत भगवंत सगुर दीनो पूरा मंत सोवड़ भागी जिस नाम प्यार तिसके संग तरे संसार रहाओ सोई ज्ञानी जे सिमरे एक तो तनवंता जिस बुद्ध विवेक तो कुलवंता जे सिमरे स्वामी सो पतवंता जे आप शानी गुर प्रसाद परम पद पाया गुण गोपाल निरहिण ते आया टूटे बंधन पूर्ण आसा हर के चरण हृदमाय निवासा कहो नांग जाके पूर्ण कर्मा सो जन आया प्रभु की सरना आप वित पाम सब कीने राम रसायन रसना ची

नाम जपत हर चरण निवास निर्विघ्न भगत पज हर हर नाव रसक रसक हर के गुण गाओ हरहाओ हर सिमरत किस चाख ना जोह हर सिमरत दायत दो ना पोह हर सिमरत मोह मान ना बधे हर सिमरत गर्भ जोन ना रुद्धे हर सिमरन की सगली बेला हर सिमरन बो माई अकेला जात अजात जपे जन कोए जो जापे तिसकी गद होए हर का नाम जपिगे साध संग।

निमखना छोड सदगी साथ हर सा प्रीतम अवर ना कोय सार समाले साचा सोए माल पिता सुत बंद नारायण आद जुगाद भगत गुण गायन इसकी धार प्रभु।

का निवास, तिद गुर कौ सद करी नमस्कार, तिद गुर कौ सद जाओ बलिहार, सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुर नानक जप जप स जीवा।

भगत करो जन शरण तुम्हारी, नाओ विर माया नाओ मेरे पूंजी, तुम्हें छोड़ जानो नहीं दूजी, नाओ मेरे बंधप नाओ मेरे पाई, नाओ मेरे संग अंत होए सगाई, माया

कड़ पीतर यूं वढ़ लियो न जाई, प्रेम पलीता सुरत होवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अग्न सहजे पर जाली, एक चोट सजाया, सात संतोष।

कोड़ चंद्र में करे चराक, तुरते तीस उजेवे पाक, नाभरे कोड़ ठाडे दरबार, धर्म कोड़ जाके प्रतहार, पवन कोड़ चौबारे फिर है, बाजग कोट सेज बिस्तर है।

विद्या कोट सबे गुण कहे तऊ पार ब्रह्म का अंत न लह बावन कोट जाके रुमावली रामन सयना जयते शली सहस कोट भोकर्त पुराण दुर्योधन का मथिया मान कंदर्व कोट जाके लवे न तरै अंतर अंतर मनसा हरै

असंख कोट अन पूजा करी एक न पूस नामे हरी परमे नाम दियो इहो करना अंत रूप तेरे नारायण पर तान पर दारा पर हरी ताके निट बसे नर हरी जो

जैसी संबल देख सुआ बिगसाना, अंध की बार मुआ लपटाना, पापी का घर अग्ने माहे, जलत रहे मिटवे कब नाहे, अरहाओ हर की भगत न देखे जाए, मार्ग छूड़ अमार्ग पा।

औरेठानी दुट सवा मेल मंत्र उपाया करसे औध कनेरी गिरतार जाल ज्वाला पै राखियो राजा राम माया फेरी काड खड़ग काल पै कोपियो मोए बताओ जो तुह रखे पीत पीतांबर तिरपावन तनी थंब माए हर पाखे हरण आगस जन नखे बिदारियो।

उपाल गंग जमन जो उल्टी बहे तो नामा घर करता रहे साल कड़ी जा बीती सुनी अजो न आयो तिर पवन तनी पाखंतन बाज बजाएला गरड़ चढ़े गोविंद आएला।

नाम दियो सबर आसमाए, मिल हिंदू सब नामे पह जाए, जो अब की बार न जीव गाए, ता नाम देव का पतिया जाए,

राज गुरमत उत्तम संग साथ हर नाम रसायन सहज आथ मत बिसरस रे मन राम बोल अपरंपर अगम अगोचर गुरमुख हर आप तुलाए अतुल तोल रखाओ गुर चरण सरे वे गुर सिख तोर गुर सेव तय तज मेर तोर नर निंदक लोभी मन कठोर गुर सेव न पाई।

आग गुरमेल मिलावे करे दात गुरसुख प्यारे दिन सरात फल नाम प्राप्त गुर तुस दे कौ नानक पावे विरले के बसंत महला तीजा एक तुका साहिब पावे सेवक सेवा करे जीवित मरे

कया सुने ना खाया मन है तेना ही सेती वासा। परुणत नानक दासन दासा खिन तोला खिन मासा। बसंत हिंडोल महला पहला साचा साऊ गुरु सुख दाता। हर मेले पुख गवाए कर कृपा हर पग दृढ़ाए। अन दिन हर गुण गाए मद फूले रे मन चेत हरी। बिन गुरमुख तनाही त्रै लोई गुरमुख पाए नाम हरी रहाओ। बिन भगती नहीं सतगुर पाईए बिन भागा नहीं भगत हरी। बिन भागा सत्संग न पाईए कर्म मिले हर नाम हरी। धड़ कड़ गुप्त उपाए वेख प्रगट गुरमुख संत जना। हर हर करे सुहा रंग पीने हर जल अमृत नाम मना। कौ तख्त मिले वडियाई गुरमुख से प्रधान किए। पारस पेट पए से पारस नानक हर गुर संग थिए।

रह न सको दर्शन देखे बेन, सहज मिलो गुरमेल मिलाए अरहाओ, यो मन लोभी लोभ लुभाना, राम सार बौर पछताना, बिछिरत मिलाए गुर सेव रंगे, हर नाम दियो मस्तक उड़ पागे,

भगत वछर हर वस्ते मन आए गुर कृपा ते सहज सुभाए भगत करे विचों आप खोए तद की सात मिलावा होए भगत सोह है सदा हर प्रद्वार गुर कै हित साचे प्रेम प्यार अरहाओ भगत करे सो जान निर्मल होए गुर सबदी विचो होमे खोए हर जीव आप से मन आए सदा सांत सुख सहज समाए साच रते

गुर सब्दी हर चेत सुभाए, राम नाम रस रहे अघाए, कोड़ कुटंत्र के पाप जल जाहे, जीव तुमरे हर नाम समाहे, हर की दात हर जीव जाने, गुर के शब्द एहो मन मोलिया, हर गुण दाता नाम खाने रहाओ, भगवे वेश प्रमुक्त न होए, बहु संजम सांत न पावे कोए, गुरमत नाम प्राप्त होए, वडभागी हर पावे सोए, काल में

प्रसाद ज्यो पसरी सूरज किरण जोत त्यों कड़कड़ रमैया ओत पोत एक कोहा रविया सर्बताए गुरसबदी मिल गए मेरी माए हराओ कड़कड़ अंतर एक

कमल परया मेर संगत कर प्रभानछे रहाओ तुमरा जन जात अब जाता हर जप्यो पतत पविशे हर कियो सागल पवन ते ऊपर हर शोभा हर प्रभ दिनशे जात अजात कोई प्रभ चावे ता पूरे मानस तिनशे से तन वड्डे वड पूरे हर जन जेन हर तारो हर उर्चे हम ढींडे ढीम बहुत अद भारी हर तार कृपा प्रभ मिलशे जन नानक गुर पाया घर तूठे हम किए पतत पविशे बसंत हिंडोल महला चौथा मेरा एखिन मनुमा रह न सके नित हर घर नाम रस गीदे जो बारक रसक परे थन माता थन काढ़े बिलल बलीदे गोविंद जियो मेरे मन तन नाम हर बीदे वड़े भाग गुर सतगुर पाया मेरे काया नगर घर सीधे रघाओ जान के सास सास है जेते हर बेरे प्रभु हर बीदे ज्यो जल कमल प्रीत अद भारी बे जल देखे सुख लीदे जन जप्यो नाम निरंजन नर हर उपदेश गुरु हर प्रीदे जन्म जन्म की हो में मल निकसी हर अमृत हर जल नीदे हमरे कर्म न बिचरो ठाकुर तुम पैज रखो अपनी दे हर पावे सुन बिनो बेनती जन नानक शरण पवीदे बसंत हिंडोल महला चौथा मन खिन खिन परम परम बोतावे तिल करणी वासा पाईए गुर अंक शब्द दारू सिर तारियो कर मंदर आण वसाइए गोविंद जियो सत्संगत मेल घर त्याईए हो में रोग गया सुख पाया हर सहज समाध लगाइए गाओ घर रतन लाल बहु मानक लादे मन भ्रमया लय ना सकाइए ज्यो ओडा कूप गुज खिन काढ़े त्यो सतगुर वत्स लहाइए जिन ऐसा सतगुर साधन पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाइए जन्म पदार्थ पुन फल पाया कौडी बदले जाएगे मधुसूदन।

प्रभु देहे साज संगत मैं यो विश्राम सदा हृदय जपी प्र तेरो नाम तुझ बिन दूजा कोई नाहे सब तेरो खेल तुझ मैं समाहे।

काट काट काट काट रया समाय जाके भगत आनंदमय जाके भगत को नाही खै जाके भगत को नाही पै जाके भगत को सदा जय कौन उपमा तेरी कही जाए सुखदाता प्रवरयो समाय नानक जाचे एक दान कर कृपा मुझे देहो नाम बसंत मोहल्ला पंजवा मिल पानी ज्यों हरे बूट साध संगत त्यों होमे छूट जैसी दासे तीर मीर तैसे उदाहरण गुरे पीर तुम दाते प्रभ देनहार नेमख नेमख इस नमस्कार अरहाओ जिसे प्राप्त साध संग हे जन लागा पार ब्रह्म रंग ते बंधन ते पय मुक्त भगत आराधे जोग जुगत नेत्र संतोखे दर्श पेख रसना गाए गुण अनेक तिसना बूझी।

पर देव सगल उदारन तेरो नाम। नांग पायो इो निदान बसंत मगला पंजवा तुम बड़दा ते दे रहे जी प्राण मैं रब रहे दीने सगले पूजन खान।

जिसको चाह है सुर नर देव, संसवा की लगो सेव, आद पुरख जिकी आदान, जिसको मिलया हर निधान, इसकी गत मित कही न जाए, नानक जान हर हर ते आए।

दान तेरिया संत जिना की बाशो तूर। जप नानक स्वामी सद हजूर, बसंत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा। गुर कृपा ते नित चवा प्रभ रखवाले माई बाप, जाके सिमरन नहीं संताप खसम त्याई एक।

सांत सहज गृह सद बसंत गुरपुरे की सरणी आए कल्याण रूप जप हर घर मंत्र रहाओ। सोग संताप कटे प्रवे आप गुर अपने को नित नित जा।

गुरपूरे सा पूरा किया, अमृत नाम सिद मैं दिया रहाओ, कर्म धर्म मेरा कछ न बिचारियो, बां पकर भवजल निस्तारियो, प्रकाट मैल निर्मल करे, गुरपूरे की सरणी परे, आप करे आप करने हारे, कर कृपा नानक उधारे, बसंत महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, देख फूल फूल फूले, अहंग त्याग त्यागे, चरण कमल पागे, तो मिलो प्रस भागे, हर चेत मन मेरे, अरहाओ सगन बाज कूले, एक रह सूक कठूले, बसंत रुत आई प्रफूलता रहे, अब करू आयो रे, एक नाम बोवहो बोवहो, अनरूत नाही नाही।

ना पण सज दोत सवार प्रयो सेवो प्रभ प्रेम आधार गुर शब्दी बिगत्यास निवार मोहन मोह लिया मन मोहे गुर के शब्द पछाना तोहे नानक ठाडे चाह है प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे कृपा तार बसंत महला।

मन पूलो समझस साच नाए, गुरु शब्द विचारे सहज पाए रखाओ। मन पूलो परमस पावर तार, बिल बिरथे चाहे बहु विकार, मैग जो फासस कामहार, कड़ बंधन बाध्यो शीश मार, मन मुग्धो दादर भगत हीन, दर पलट सरापी नाम बीन, ताके जात न पाती नाम लीन, सब दुख सुखाई गुणे बीन, मन चले न जाई ठाक राख, बिन हरस राखे पत ना साख, तू आपे सुरता आप राख, हर तारण देखे जाने आप, आप पुराए किस कहो जाए, गुर मिले बिरथा कहो माए, अब गुण छोड़ो गुण कमाए, गुर शब्दी राता सच समाए, सदगुर मिले मत उत्तम होए, मन निर्मल हो में कड्डे तोए, सदा मुक्त बंद न सके कोए, सदा नाम खाने और न कोए, मन हर के भाणे आवे जाए, सब में एको केश पहन न जाए, सबको वरते हुक्म सुमाए, दू सू सब तिसर जाए, तू अपुल ना पुलो कदे नाहे, गुर शब्द सुनाए मत अगाहे, तू मोटो ठाकुर शब्द माहे, मन नानक मानिया सच सलाहे, बसंत महला पहला दर्शन की प्यास जिस न रहोए, एक तराचे पर घर दोए, दूर दर्द मत अमृत खाए, गुरमुख बूझे एक समा

एक नराल अकथ कहानी एको शब्द सच्चा निशान पूरे गुरते जाने जान एको धर्म दृढ़ सच कोई गुरमत पूरा जुग जुग सोई अनहद राता एक लिवतार ओ गुरमुख पावे अलख अपार।

अनिर्माल निर्मल नाव घर में घर जो देख दिखावे गुरमैली सो मैल बुलावे मन में मनुआ चित में चीता ऐसे घर के लोग अतीता हर सोगते रहे निराशा अमृत चाख हर नाम निवासा आप शान रहे लिवलागा जन्म जीत गुरमत दुख भागा।

तै लीने भगत राख, तिनका गुण अवगुण ना बीचारे कोए। एवद देख मन लगा सेव, तबीर त्यायो एक रंग, नाम देव हर जीव बसे संग, रविदास ते आए प्रभ अनूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप, बसंत महला पंजवा अनक जन्म प्रमे जोन माहे, हार सिमन बिन नरक पाहे, भगत बिहूना खंड खंड, बिन बूझे जम देत डंड, गोविंद पजो

दू सुग बांधो संसार मन उदरण का साजनाहे पाबंदन नित पौत जागे ईट मीत को सखा नाहे आ बीज आपे ही खावे जाके तीने होत बेकार ते छोड़ चलिया खिन मैं गवार माया मोह पर म्या किरतरे कर कर म्या करने हार अलिप्त

प्रीत कुटुंब संबंधी माया मोह पसारी जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुविधा कर्म बेकारी अंतर रतन पदार्थ हित कौ दुरे न लाल प्यारी नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर।

तू हर बेअंत, तू हर स्वामी, तू आपे ही जाने अपनी भांत, हर के निगट निगट हर निगट ही बसते, ते हर के जन साधु हर भगात, ते हर के जान हर स्यों रल मिले, जैसे जान नानक सलले सल मिला, तारंग महला चौथा जापमान नर हरे नर हर स्वामी।

तित गृह वाजे पंज शब्द वड़पाग मथोरा तेन जन के सब पाप गए सब दोख गए सब रोग गए काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए तेन जन के हर मार कढे पंच चोरा हर राम बोलो हर साधु हर के जन साधु जगदीश जपो मन बचन कर्म हर हर आराधु हर के जन साधु हर राम बोल सब पाप गवादु नित नित जागरण करो सदा सदा आनंद जप जगदीशोरा मन इच्छे फल पावो सबे फल पावो धर्म अर्थ काम मोख जन नानक हर सो मिले हर भगत तोरा सारग महला चौथा जप मन माधो मधुसूदनो हर श्री रंगो परमेश्वरो सत परमेश्वरो प्रभ अंतर जामी सब दुखन को हंता सब सुखन को दाता हर प्रीतम गुण गाओ रहाओ हर कड़ कटे कड़ बसता हर जल तले घर बसता हर थान सनंतर बसता मैं घर देखन को जाओ कोई आवे संतो हर का जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो मुए मार्ग दिखलावे तिस जन के हों मल मल धोवा पाओ हर जन को हर मिलया हर श्रद्धा ते मिलया गुरमुख हर मिलया मेरे मन तन आनंद पए मैं देखया हर राव जन नानक को कृपा पई हर की कृपा पई जगदीशर कृपा पई मैं अनदनो साध साध सदा हर जपया हर नाव सारग महला चौथा जप मन निरपो सत सत सदा सत निर्वैर अकाल मूर्त आजोनी संप

करत रहत निरहारी, तेन जन की सेवा थाए पई, जिनको किरपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले, जो पावत हर राम मुरारी। जिनका अंग करे मेरा स्वामी, तिनकी नानक घर पैज सवारी। सारग मोहल्ला चौथा पड़ताल, जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निदान। सासृड का प्रभु मेरे मन हर बोल, हर पुरख अविनाशी रघाओ। हर का नाम अमृत हर हर हरे, सो पिए जिस राम प्यासी। हर आप दयाल दया कर मिले, जिस सदगुरु सो जन हर हर अमृत नाम चखासी। जो जन सेव है ससदा मेरा हर घरे, इनका सब दुख परम पौ जासी। जन नानक नाम लए ता जीव है, ज्यो चातक जल पीए तृप्तासी। सारग मल्ला चौथा जप मान श्री राम, राम रमत राम सत सत राम। बोलो भैया सद राम राम, राम रव रहा सरबगे रघाओ। राम आपे आप आपे सब करता, राम आपे आप आप सप्त जगे। जिस आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय, सो जन राम नाम लिव लागे। राम नाम की उपमा देखो हर संतो, जो भक्त जिना की पत राखे। वेत कलयुग अगे जन नानक का अंग किया, मेरे राम राय दुश्मन दूख गए सब पगे। सारंग महला पंजवा चौपदे कर पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। सदगुर मूर्त कौ बल जाओ, अंतर प्यास चातक ज्यो जल की। सबल दर्शन कल पाओ रघाओ, अनाथा को नाथ सर्वप्रद पालक। भगत वशिल हर नाओ, जा को कोई ना राखे प्राणी। तिस तू दे असराओ, नितरिया तर निगतिया गत। निथाविया तू थाओ, दैज जाओ ता तू संगे। तेरी कीर्त कर्म कमाओ, एक स्ते लाख।

प्रसाद कैसे कहो मुए जी वेदनाई। दर्शन प्यास प्रेप्रीत मनोहर मान ना रहे वो विद उमकाई रखाओ। चितवन चितवो प्रेप्रीत बैरागी तद पावो हर दर्शाई। जतन करो तो मन नहीं तीरे को है रे संत मिलाई। जब तब संजम पुन सब होम अर्पो सब सुख जाई। एक निमुख प्रे दर्श दिखावे ते संतन कहे बल जाई। करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रहनाई। मान अपमान हो सगल त्यागो जो प्रे बात सुनाई। देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सदगुर पुरख मिलाई। प्ररंग दयाल हुए गृह में पाया जन नानक तप्त बुझाई। सारग महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही। नरक कोर में उर्तव करता नेमख नेमख गुण गाही। अरहाओ आनक जन्म प्रमतो ही आयो मानस जन्म दुलभाही। गर्भ जोन छोड़ जो निकसेओ तव लागो अनठाही। करे बुराई ठगाई दिन रायन निफल कर्म कमाही। कण नाही तो गान लागे ताए ताए दुख पाही। मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज परेओ कुसुमाही। तर मराए जा पकस बगरे तो काल मुखा उड़ जाही। सो मिलया जो प्रभु मिलाया जिस मस्तक लेख लिखाही। कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अल्प रहे मन माही। सारग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई। जाके बिशरत होत मृत का गृह में रहन न पाई। रघाओ जी ही प्राण को दाता जाके संग सुहाई। करो कृपा संतो मुए अपनी प्रा मंगल गुण गाई। चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैनो तूर बाशाई। जे प्रसाद मिल गए प्रभु

रोग सोग तेरे मिटे सगल अग निम खीए हर नाम ते आए अरहाव छोड़ सियानप बोच तराई साधु सरणी जाए पाए जो होए कृपाल दीन दुख पंजन जमते होवे तरमराए एक सबेन नाही को दूजा।

पलक सुख साध समागम कोड बैकुंठे पाए रघाव दुलाभ दे जब होत पुनीता जम की त्रास निवारे महापत्ते पादक उतरे हर नामा उतारे जो जो सुने राम जस निर्मल ताका जन्म मरण दुख नासा कहो नानक पाएगे वडपागी मन तन हुए बेगासा सारग महला पंजवा दो पदे कर चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद मोहन कर आवहो करो जो दरिया मान करो अब महाने बोलो पूर चूक तेरी प्रेत्रिया रखाओ निकट सुनो अर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुर लाए पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमक जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिस लख बरिया साध संत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिरिया सारग महला पनवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सा सोई कर रहा देह नाओ बलिहारी रखाओ क्यों दिस फूल रही बिखिया बिख गुर मंत्र मूख गरड़ारी आ दे राख्यो करे अपना ज्यो जल कमला अलपारी हाओ नाही किस मैं क्या हुसा तब तुम ही कल तारी नानक पाग प्रयोगर पाछे राग संत सदकारी सारग महला पंजवा अब मोहे सर्प पा बिरकाते करण कारण समरत स्वामी हर एक स्ते मेरी गाते रघाओ देखे नाना रूप हो रंगा अन नाही तुम पाते दे आधार सर्व को ठाकुर जी प्राण सुख दाते प्रम तो हार जो परे हो तो गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया ए सुख बेगा नहीं राते सारग महला पंजवा अब मोहे लभ देव है घर टेका गुर दयाल पय सुखदाई अंधले मानक देखा रखाओ काटे अज्ञान तेमर निर्मलिया बुद्ध विगास बबेका ज्यो जल तरंग फेन जल हुई है सेव कु ठाकुर पय एका जय ते उठ्यो तय ही आयो सभी एक एका नानक दृष्ट आयो सब ठाई प्राण पति घर समका सारग महला पंजवा मेरा मान एक ही प्रेम मांगे पेख आयो सब थान देश प्रे रोम ना समसर लागे रहाओ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन पेसो दृष्ट ना करे रुचांगे हरस चाहे प्रे प्रेम कुटेरे ज्यो आल कमला लोभांगे गुण निधान मन मोहन लालन सुखदाई सरबांग गुरु नानक प्रापाए पठायो मिलो सखा गल लागे सारग महला पंजवा आप मोरो ठाकुर स्यो मन माना साध कृपाल दयाल पय है यो छेद्यो दुष्ट बिगाना रखाओ तुम ही सुंदर तुम्हें सियाने तुम ही सुगर सुजाना सगल जोर अर ज्ञान ध्यान एक निमकन कीमत जाना तुम ही नायक तुम्हें शत्रपात तुम पूर रहे भगवाना पावो दान संत सेवा हर नानक सब कुरबाना।

जब भूखो तब भोजन मांगे हकाए सुख कनारे तब अरोग जब तुम संग बस्तो छुटकत हुए रवारे कवन बसेरो ता दासन को

काहू काहू अपनो ही चित आवे, जो काहू को चेरो होवत ठाकुर ही पै जावे रगाव। अपने पै दुख अपने पै सुख अपने ही पै बिरता, अपने पै मान अपने पै ताना अपने ही पै अर्था। किन ही राज जोबन तन मिलख किन ही बाप मै तारी, सर्व थोक नानक गुर पाए पूर्ण आस हमारी। सार्ग मोहल्ला पंजवा। झूठो माया को मदमान त्रो मोह दूर कर बपरे, संग उपाले जान रगाओ मिथ्या राज जोबन अर उमरे। मीर मलक अर खान मिथ्या कापर सुगंध तराई,

खई तुम तारे सुमत संग तुम्हारे पाई अनक जोन भ्रमते प्रा बिसरत सास सास घर गाई जो जो संग मिले साधु कह ते पतत पुनीता।

लगाओ, जाके सूद परो ए जनता, किस प्रभु का जस गाव हो। सिमर ठाकुर जिन सब कुछ दीना, आन कहां पे जाओ, सबल सेवा स्वामी मेरे की, मन बाँ

दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद आनंद गुण गाया, बां पगर कढ़ लीने अपने, गृह अंध कूप ते माया। कहो नानक गुर बंधन काटे, बिशरत आन मिलाया। सारग महला पंजवां, हर के नाम की गद ठांडी, वेद पुराण सिमर साधु जन, खोजत खोजत कांडी रहाओ। शिव ब्रांच अर इंद्र लोक, तामे जल तो फिरिया, सिमर सिमर स्वामी पैसी तल, दुख दर्द प्रभ गिरिया। जो जो तरयो पुरातन नवतन, भगत पाए हर देवा, नानक की बेनंती प्रभ जियो, मिले संत जन सेवा। सारग महला पंजवा, जेवे अमृत गुण हर गाओ, हर हर बोल कथा सुन हर की, उचरो

कान मुक्त को दाता एक सस्यों लेवलाओ कहो नानक ताकी सरनाई देत सगल अपयाओ। सारग महला पंजवा होती नहीं कमन कज करनी ए ओड पाई मिल संत गोपाल एक की सरणी रगाओ। पांच दोख शिद्र या तरम है बिखे ब्याध की करनी आस अपार दिनस गण राखे ग्रस्त जात बल जरणी अनाथे नाथ दयाल सुख सागर सर्व दुख पय हरणी मन बांछित चितवत नानक दास।

समझ अचेत चेत मन मेरे कथी संतन अकथ कहानी लाभ लहो हर दे आराधो छुटके आमन जानी उदम सक

छोड़ो कपट होए निर्वैरा, तो प्रसंग निहारे। सतन वंजो सतन संचो कबू न आवो हारे, खात खर्चत किश निखुटत नाही। अग

प्रव सेव करत अन सेवा बिरथा काटे काल। जा जम आए संघारे प्राणी तब तुमरो कौन होवाल। राख ले हो दास अपने कहो सदा सदा कृपाल। सुख निदान नान प्रा मेरा साध संग तन माल। सार्ग महला पंजवा मन तन राम को व्यवहार। प्रेम भगत गुण गावत गीदे होत नहे संसार रगाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी

मन तन धन तो तुमरा स्वामी आन न दूजी जाए। जो तू रखे तिवखी रहना तुमरा पहने खाए, साध संगत के बल बल जाई।

शरीर सब हुट्यो, सास गयो तत घाट रहाओ, अनास रियान उधरले पुखे माया गईया हाट, तेल भग करत करत पछतावे, कभू न साके शांत, निंदक जमदूती आए संगारेओ, देवे मूंड ऊपर मटाक, नानक आपन कटारी

काम क्रोध निंदा पर हरिये काढे साधु के संगमार। जन्म पदार्थ गुरमुख जीतया बौर न जुए हार। आठ पैर प्रभु के गुण गावे

मोह मद मातो सिमरत ना गए हरे रगाओ साध संग जपते नारायण तिनके दुख जरे सबल दे तन ओए जन्मे प्रभ के संग रले चार पदार्थ अष्ट दिशा सिद्ध

बेअंत पार ब्रह्म स्वामी पर तेरी जाए न लाखी। चरण कमल प्रीत मन विद्या कर सर्वस अंतर राखी। वेद पुराण सिमरत साधु जान ए बाणी रसना पाखी। जप राम नाम।

गाए बिनसी सब अवमानी रगाओ तार अनुग्रह अपनी कर लीनी गुरमुख पूर ज्ञानी सर्व सुख आनंद कनेरे ठाकुर दर्श त्यानी निविट वर्तन ससदा सुहागन तेज साई जानी प्रे रंग रंग रति नारायण नांग तिस कुरबानी सार्ग महला पंजवा तो चरण आसरो ईस तुमे पछानू साग तुमे संग राखन हार तुमे जगदीश रगाओ तू हमरो हम तुमरे कहिए एत उत तुम ही राखे तू बेअंत अपरंपर स्वामी गुर कृपा कोई लाखे बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जाने जाको मेल लय प्रव नानक थे जन दर गए माने सारंग महला पंजवा चौपदे कर पंजवा एक ओंकार सदगुर प्रसाद हर भज आन कर्म विकार मान मोह न बुझ तृष्णा काल ग्रह संसार गाओ खात पीवत हस्त सोवत औध बिती असार नरक उधर परमंत जल तो जमे की निसार पर द्रोह करत विकार निंदा पाप रत कर चार बिना सदगुर बूझ नाही तम हो महा अंधार बेट खोरी खाए मुठ कितना सिर जनहार गोविंद गुप्त होए रहे न्यारो मातंग मत अंकार कर कृपा पर संत रखे चरण कमल आधार कर जोर नानक शरण आयो गोपाल पुरख अपार सार्ग महला पंजवा कर सेवा पड़ताल एक ओंकार सदगुर प्रसाद शुभ वचन बोल गुण अमोर किंकरी विकार देखरी विचार गुर शब्द त्याए मै

मुहेली प्रे प्रीत हृदय मेल सरबरी प्रीत दयार प्रसदारी दयार काए आन आन रुचिए हर संग संग खचिए जो साध संग पाए कौ नानक हर ते आए अब रहे जमे मेल सार्ग महला पंजवा तंचना बो दत करा होम दान अर्प तरा मन अनक सोच पवित्र करत ना हीरे नाम तुल मन चरण कमल लागे रघाओ चार वेद जेब पने दस अष्ट खष्ट श्रवण सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे परत संद सोच चार किरिया कुंट निराहार।

प्रीत लाए हर त्याए गुण गोबिंद सदा गाए हर जन की रेन बांश दयनगार स्वामी सर्व कुशल सुख विश्राम आन दा आनंद नाम जम की कछ नाहे त्रास तिमर अंतर जामी एक शरण गोविंद चरण संसार सगल ताप हरण नाभ रूप साध संग नानक पार ग्रामी सारग महला पंजवा गुण लाल गावो गुर देखे पंचा ते एक छूटा जो साध संग पग राओ रगाओ दृष्टो का संग न जाए मान त्याग मोह एक घर प्रीत लाए मिल साध संग सोहा पायो है रे गुण दान सगल आस पूरी नानक मन आनंद पय गुर बिखम गार तोरी सारग मोहल्ला पंजवा मन बिरागेगी खोजती दरसार रगाओ साधु संतन सेवक प्रयो हीरे त्यायो आनंद रूपी पेख कै हो महल पावोगी काम करी सब त्याग कै हो शरण परोगी नानक स्वामी घर मिले हो गुरमनाभ होगी सारग मोहल्ला पंजवा ऐसी होए परी जानते दयार रगाओ मातर पितर त्याग कै मन संतन पाए बेचायो जात जन्म कुल खोइए हौ गावो हर हरी लोक कुटुंब ते टूटिए प्रभ किरत किरत करी गुरमुख उपदिसया नानक सेव एक हरी सारग महला पंजवा लाल लाल मोहन गोपाल तू कीड़ हस्त पाखान जंत सर्व में प्रतपाल तू रहाओ ने दूर पूर हजूर संग सुंदर रसाल तू ने बर्ण बर्ण ने कुले कुल नान प्रभ कृपाल तू सारग महला पंजवा करत केल बिखे मेल चंद्र सूर मोहे उपजता विकार दुंदर नौपरी चुनंत कार सुंदर अनेक पाओ करत फिरत बिन गोपाल तोहे रगाओ तीन पौने लपटाए रही काज कर्म ना जात सही उन मत अंध तंद रचत जैसे महासागर होहे उदरे हर संत दास काड़ दीनी जमकी फास पतत पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नामा हर बिन तेरो को ना सहाई कां की माल पिता सुध बनता को काहू को पाई रगाओ तन धरणी पर संपत सगरी जो मान्यो अपनाई तन छूटे का संग न चाले कहां ताए लपटाई दीन दयाल सदा दुख भंजन तस रुचना बढ़ाई नानक कहत जगत सा मिथया जो सुपना रहे नाई सारंग महला नामा कहां मन बिखिया स्यों लपटाही या जग में कू रहन न पावे एक आवे एक जाही रहाओ का को तन तन संपत का की का स्यो निहो लगाई जो दिसे सो सगल बिनासे जो बादर की शाही तज अवमान शरण संतन गहो मुक्त होए शिन माही जन नानक भगवंत भजन बिन सो सुपने पी नाही सारंग महला नामा कहा नर अपनो जन्म गवावे माया माद बिखे अरस रचियो आराम सन नहीं आवे रगाओ यो संसार सगल के सुपनो देख कहां लोभावे जो उपजे सो सगल बिना से रहन न को उपावे मितया तान साचो कर मान्यो

कोड़ कल्प के दुख बिनासन, साध दृढ़ाए नंबेरा रखाव, क्रोध निवार जले हो ममता, प्रेम सदा नवरंगी, अनपो बिसर गए प्रो जात्या, हर निर्मायल संगी, चंचल मत त्याग पव पंजन पाया, एक शब्द लेवलागी, हर अचाख त्रिखा निवारी, हर मेल लहे बड़पागी, अपारत सिंच परे सुबर सार, गुरमत साच निहला, मरत नाम रते ने केवल, आजुगा दयाला, मोहन मोह लिया मनमोरा, बड़े पाग लेवलागी, साज विचार केलब दो काटे, मन निर्मल अनरागी, गहर गंभीर सागर रतनागर, अवर नहीं अन पूजा, शब्द विचार परम पौ पंजन, अवर न जान्या दूजा, मनुआ मार निर्मल पचीनिया, हर सरते अदकाई, एक से बन में अवर न जानना, सदगुर बूझ बुझाई, अगम अगोचर अनाथ अजोनी, गुरमत एक को जान्या, तुबर परे नाही चित डोले, मन ही ते मन मान्या, गुर प्रसादी अकथो कथिये, कहो कहा वे सोई, नानक दीन दयाल हमारे, अवर न जान्या कोई, सार्ग भला तीजा, अष्टपदियां कर पहला, एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, मन मेरे हर के नाम वडाई, हर बिन अवर न जाना कोई, हर के नाम मुक्त गद पाई रगाव, शब्द पो पंजन जमकाल निखंजन, हर सेती लेवलाई, हर सुखदाता गुरमुख जाता, सहजे रहा समाई, भगतां का भोजन, हर नाम निरंजन, पहनन भगत बढ़ाई, निज करवासा सदा हर सेवन, हर दर शोभा पाई, मानमुख बुद्ध काची मनुआ डोले, अकथ न कथे कहानी, गुरमत नेत्र घर मन वसया, अमृत साची बानी, मन के तरंग शब्द निवारे, रसना सहज सुपाई, सदगुरु में रही गे सदे अपने, जिन हर सेती लेवलाई, मन शब्द मरे ता मुक्त होवे, हर चरणी चित लाई, हर सर सागर सदा जन निर्मल, नावे सहज सुपाई, शब्द विचार सदा रंग राते, होमे तृष्णा मारी, अंतर ने केवल रविया, हवे आत्म राम मुरारी, सेवक सेव रहे सच राते, जो तेरे मन पाणे, दुबदा मैल न पावे जग चूठी, गुण अवगुण ना पछाणे, आपे मेल लय अकाथ कथिये, सच शब्द सच बाणी, नानक साचे सच समान।

नानक से जन थाए पाए गए, जिनकी पद पावे लेख सारग महला पंजवा अष्टपदिया कर पहला एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद गुसाई प्रताप तुहारो डीठा करन करावन उपाय सुमावन सगर छत्रपद बीठा रखाओ राणा राओ राज पै रंका उन झूठे कहन कहायो हमरा राजन सदा सलामत ताको सगल कटा जस गायो उपमा सुनो राजन की संतो कैद जेद पाहुच बेसुमार वर्षा दा तारा ऊचे ही ते ऊचा पावन परोयो सगल कारा पावक काष्ट संगे नीर तरण कर राखे एकत कोई न किस ही संगे धड़कड़ कथा राजन की चल है कर कर तुझे उमाहा जी जन सब पाछे करया प्रथम रिजक समाहा जो कुछ करना।

जिन जिन करी अवग्या जन की ते तै दिए रुड़ाई मुक्त पए साह संगत कर तिनके अवगुण सब परखरिया तिनको देख पए किरपाला तिन पवसागर तरिया हम नाने नीच तुम्हें बड़ साहेब कुदरत कौन बिचारा मन तन शीतल गुरदर्श देखे नानक नाम अधारा सारग महला पंजवा अष्टपदी कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अगम अगाध सुनो जन कथा पार ब्रह्म की अचरज सभा रखाओ सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार मन पीतर होवे परगास ज्ञान अंजन अज्ञान विनाश मित नाही जाका विस्तार तो बाता की अपर अपार अनक रंग जाके गने ना जागे सोग हरख दोहु मैं नागे अनक ब्रह्मे जाके वेद तुन करे अनक महेश बैस ध्यान करे अनक पुरख

दुख च जम्मण दुख मरण दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए पड़ पड़ करे पुकार दुखिया पंडा खुलिया सुख ना निकले हो कोए दुख जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिवती रत्या मन तन हरिया होए दुख की अग्गी मारिए पी दुख दारू होए मोहल्ला पहला नानक दुनिया पस रंग पसु हू पस खेहे पसो पस कमावनी पी पस परिये देहे जा जियो विच्चों कड़िये पसु परे आ जाए अगे लेखा मंगे होर दसूनी पाए पौड़ी नाए सुने सुज संजम जम नेड़ न आवे नाए सुने कड़ चानना आरेर गुवावे नाए सुने

अद पारी मूर्ख अंधे त्रै गुण सेव माया कै ब्योहारी अंदर कपट उदर परण कै ताई पाठ पड़े गावारी सतगुर सेवे सो सुख पाए जिन होमे विचो मारी नानक पढ़ना गुणना एक नाओ है।

तेरे कंध सबाया नानक बख्श मिलायन हर नाम समाया। श्लोक महला तीजा माया मोहे विसारिया गुर का पौघे अपार लोभ लहर शुद्ध मत गई सच न लगे प्यार। गुरमुख जिना शब्द मन वसे दर गए मोख द्वार नानक आपे मेल लय आपे बख्शन हार। महला चौथा नानक जिस बिन कड़ी ना जीवना विसरे सरय ना बिंद तेज ज्यों क्यों मन रूसी है जिस हमारी चिंद। महला चौथा सावन आया चिम चिमा हर गुरमुख नाम ते आए दुख पुख काड़ा सब चुकाए सी मी हो मुठा शैबर लाए सब तरत पई हरियावली आन जम्या बोहल।

माया कारण श्रम अत करै सो माया ले गाडे तरे आत संचय समझे नहीं मूड तान तरती तन होए गयो तूड़ काम क्रोध तृष्णा अत जरे साध संगत कबहू नहीं करे।

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंग गुरप्रसाद खाना पीना हसना सौना विसर गया गए मरना खसम विसार खुवारी कीनी त्रिक जीवन नहीं रहे।

जियां अंदर जियो तुही, गुरमुख त्यावे से अमृत पावे, से ही सूचे हो ही। आहिरस नाम जपोरे प्राणी, मैले खच्चे हो ही। जे ही रुत काया सुख तेगा, तेहो जे ही देही। नानक रुत सुहावी साई, बिरनावे रुत के ही। मलार महला पहला।

आवे। बरस कना मेरा मन पीना, अमृत बूंद सुहानी ही अरे। गुरमोही मन हरस लीना रहाओ, सह सुखी वर कामन प्यारी। जिस गुरबचनी मन मान्या, हर वार नार पही सोहागन। मन तन प्रेम सुखानिया, अवगुण त्याग पही बैरागन। अस्थिर वर सुहाग हरी, सोग विजोत कदे न व्यापै। हर प्रभ अपनी कृपा करी, आमन जान नहीं मन निचल। पूरे गुर की ओट गही, नानक राम नाम जप गुरमुख। तन सुहागन।

मन की बिद सतगुर ते जाने अनदन लागे साधे घर स्यों ध्यान गुर शब्द रते सदा बैरागी हर दर के साची पावे मान यो मन खेले हुक्म का बद एक खिन मैं दह दिस फिर आवे जा आपे नदर करे घर पर साचा ता यो मन गुरमुख तत्काल वस आवे इस मन की बेद मन हू जाने बूझे शब्द विचार नानक नाम ते

माया मोह अज्ञान गुबार, मनमुख मोहे मुग्ध गवार, अनदिन तंदा करत विहाए, मर मर जम्मे मिले सजाए, गुरमुख आराम नाम लिवलाई, कूड़े लालच ना लबटाई, जो किश होवे सहज सुपाए, हर्ष पीवे रसन रसाए,

न पाए। यो विछोड़ा सहया ना जाए, सतगुर मिले ता मिले सुपाए। नामहीन बिनसे दुख पाए, तृष्णा जलिया भूख न जाए। बिन भागा नाम न पाया जाए, बहुबद थाका कर्म कमाए। त्रै गुण बाणी वेद विचार, बिख्या मैर बिख्या वापार। मार जन्मे फिर होए खुवार, गुरमुख तुरिया गुण उर तार। गुर माने माने सब कोए, गुर बचनी मन शीतल होए। चौ जुग सोभा निर्मल जन सोए, नानक गुरमुख विरला कोए। राग मलार महला चौथा, कार पहला चौ

तारी। हर घर आन मिलावो गुर साधु, जिस आए निस हर उर तारी। गुर डीठे गुर का सिख बिगसै,

खाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए, बहु व्यंजन मिसटाए, करी पाकसाल सोच पवित्रा, सुन लाभ हो पूघर राय, दुष्ट बिदारे साजन रहस्य, ए मंदर कर अपनाए। जौ ग्रे लाल रंगी यो आया, तौ में सब सुख पाए, संत सभा ओट गुर पूरे, पुरमस्तक ले

होता बिन खीरे रहन न जाई। सार संभाल माता मुख नीरे ताको त्रिप्त अगाई। हम बारक पिता प्रवदाता फूले बारक अनक लख बरिया। अनठौर नाही जय जाता रघाओ चंचल मत बारक बपरे की। सर्प अगन कर मिले माता पिता कंठ लाए रखे। आनंद सहज तब खिले जिसका पिता तू है मेरे स्वामी। तिस बारक भूख कैसी नाम रिद नाम दान गृह तेरे मन बांछे सो लैसी। पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारक मुख मांगे सो देना। नानक बारक दर्श प्रभ चाह है मोहे हृदय बसे नित चरना। मलार मोहल्ला पंजवा छगर विधि जोर आहार करे तजो सगल अंदेसा। कार्य सगल आरंभ्यो कर का ठाकुर का पहारूसा। सुनिए बाजे बाज सुहावी भोर पया मैं प्रेम मुख पेखे। गृह मंगल सोहलावी अराओ मनुआ लाए सवारे थाना। पूछो संता जाए खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो। भगत करो निव पाए जापरे आए बसे गृह आसन। तब हम मंगल गाया मीत साजन मेरे पए सुहेले। प्राभ पूरा गुरु मिलाया सखी सहेली पए आनंदा। गुर कार्ज हमरे पूरे कहो नानक वर मिलिया सुखदाता। छोड़ न जाई दूरे मलार महला पंजवा। राज ते कीट कीट ते सुरपत कर दोख जठर को परते। कृपा निज छोड़ आन को पूजे आत्म काती हरते। हर बिसरत ते दुख दुख मरते। अनक बार प्रमे बो जोनी एक न काहू तरते। रहाओ त्याग स्वामी आन को चितवत मूड़ मुद खल खरते। कागर नाव लंगे कत सागर बिरथा कथत हम तरते। शिव बिरंच

राजा राम रमत सुख पायो, बरस मेघ सुखदाई रहाओ। एक पाल बिसरत नहीं सुख सागर, नाम नवे निद पाई। उदाउद पयो पूर्ण भावी को, पेटे संत सहाई। सुख उपजे दुख सगल बिनासे, पार ब्रह्म लिवलाई। तेरे संसार कठिन पै सागर, हर नानक चरण

आनंद मंगल सुख पाया रखाओ। मिटे कलेश कृष्ण सा बूझी पार ब्रह्मन त्याया। साध संग जन्म मरण मारे बौर न कतहु ताया। मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिवलाया। अंगीकार कियो प्रभ अपने नानक दास शरणाया। मलार मुहल्ला पंजवा विशरत क्यों जीवे ओए जीवन। चित्ते उलास आस मिल।

पायो तान तन होत बिरानो लोग दुराए करत ठगियाई होतो संग न जानो मृग पंखी मीन दीन नीच ए संकट फिर आनो कहो नानक पान प्रतारो साध संगत सुख मानो मलार महला पंजवां दुष्ट मोए बिख खाई।

मन मोयो हर पंख लगाए मलीजै रहाओ खोजत खोजत मार्ग पायो साधु सेव करीजै तार अनुग्रह स्वामी मेरे नाम महारस

होए आनंद सगल भाग रहाओ। संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग। कान कोर प्रीत मोर इत चात्रक बूंद ओर। ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया तोहो।

प्रयो प्रयो करे सबे है जेती गुर पावे प्रयो पाई प्रयो नाले सदगी सच संगे नदरी मेल मिलाई सब में जियो जियो है सोई काट काट रहा समाई गुर प्रसाद कर ही परगासया सहजे सहज समाई अपना काज सवार हो आपे सुखदा ते गोसाई गुर प्रसाद कर ही पिर पाया तो नानक तबत बुझाई मलार महला पहला जागत जाग रहे गुर सेवा बेनहार मैं को नाही अनक जतन कर रहे न पावे आच काच टर पाही इस तान तानका कहो गर्भ कैसा बिन सत बार ना।

मन रे सतगुर सेव समाए, वड़े पा गुर पूरा पाया, हर हर नाम त्याए रहाओ, हर अपने पाने सृष्ट उपाई, हर आपे दे आधार, हर अपने पाने मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार, हर के पाने सतगुर पेटिया, सब जन्म सवारन हार, वाह वाह बाणी सत है गुरमुख बूझे कोए, वाह वाह कर प्रसा लाई है तेस जेवड़ अवर न कोए, आपे बगसे मेल लय कर्म प्राप्त होए, साचा साहेब मारो सतगुर दिया दिखाए, अमृत वरसै मन संतोखिए सच रहे लिवलाए, हर के नाए सदा हरियावली फिर सुके ना कुमलाए, बिन सतगुर किने ना पायो मन वेखो को पतियाए, हर कृपा ते सतगुर पाइए भेटे सहज सुपाए, मानमुख परम भुलाया बिन पागा हर तन ना पाए, त्रै गुण सबा तात है पढ़ पढ़ करे विचार, मुक्त कदे ना होवई न पाएन मोह द्वार, बिन सतगुर बंधन ना टुट ही नाम न लगे प्यार, पढ़ पढ़ पंडित मुनी थके वेदां का अभ्यास, हर नाम चित ना आवई न निज कर होवे वास, जमकाल सिरो ना उतरै अंतर कपट विनाश, हर नावे नू सब को प्रताप दा विण भागा पाया ना जाए, नदर करे गुर पेटिए हर नाम से मन आए, नानक नामे ही पत उपजे हर सोरहां समाए, मलार महला तीजा अष्टपदी

पूजा लाया, दस अवतारी राम राजा आया, दैता मारे ताए हुक्म सवाया, ईस महेश्वर सेव इनी अंत ना पाया, सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया, दुनिया तंदे लाए आप छपाया, धर्म कराए कर्म तुरों फरमाया, श्लोक महला दूजा सावन आया हे सखी।

भक्ति शब्द सूर है काम क्रोध जिनी मारिया सच्चे अंदर महल शब्द सवारिया छे भगत तुद पाम दे सच्चे नाहे प्यारिया सतगुर सेवने अपना बिना विटो हो वारिया। सलोक महला तीजा ऊनव आया वरसे लाए चढ़ी नानक पाने चले कंत कै तो माने सदा रली। महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपड़े इस मेघे हथ किशनाहे जिन यो मेघ पठाया तिस राखो मन माहे तिस नूं मन वसाए सी जाको नदर करे नानक नदरी बारी सब करण पला करे पौड़ी। तो हरसदा सरेवी है जे करतन लागै वार आडाणे आकाश कर खिन में टाए उसारण हार आपे जगतो पाए कै कुदरत करे विचार मन अगै लेखा मंगिए बहुती होवे मार गुरमुख पासों लेखा निबड़े बगसे सिबत भंडार ओथे हथ ना अपड़े ऊक ना सुनिए पुकार ओथे सतगुर बेली होवे काढ ले अंती वार इना जनता नू होर सेवा नहीं सतगुर सिर करतार।

सच्चे शब्द निहालिया। नानक नाम निधान है पूरे गुरदे खालिया। सलोक महला तीजा वाह भी है हुगम पछाणिया गुर कै सहज सुपाए। मेघ वरसते दया कर गूढ़ी शैबर लाए। बाबी के कूक पुकार रह गई सुख वसिया मन आए। नानक सो साल आई है जे देंदा सबना जिया रिजक समाए। महला तीजा चातरक तू ना जान ही क्या तुद विच तिखा है किल पीते तिख जाए। दूजे पाए परमया अमृत जल पल्ले ना पाए। नदर करे जे अपनी ता सतगुर मिले सुपाए। नानक सतगुर ते अमृत जल पाया सहजे रहा सुमाए। पौड़ी एक वाणखण बैसे जाए साधना देव ही। एक पाला कक्कर पन्न शीतल जल हेव ही। एक पसम चढ़ावे अंग मैल ना तोव ही। एक जटा बिगड़ बिगराल कोल कर खोव ही। एक नगर फिरे दिन रात नींद ना सोव ही। एक अगन जलावे अंग आप विगोव ही। विणनावे तन श्यार या कै रोव ही। सोहन खसम द्वार जे सतगुर सेव ही।

अंधेका नाव पारखू, एवे करे गुवाओ, इल्तका नाव चौधरी कूड़ी पूरे थाओ। नानक गुरमुख जानिए कलका इहो न्याओ, महला पहला हरणा बाजा तै सिकदारा इना पढ़िया नाओ। फांदी लगी जात पहायन अगे नाही ताओ, सो पढ़िया सो पंडित बीना जिनी कमाना नाओ। पहलों दे जड़ अंदर जमे ता उपर होवे शाओ, राजे सी मुकदम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते, चाकर नहिंदा पायन खाओ। रत पित कुत्ते हो चट जाओ, जिथे जिया हो सी सार, नक्की वड्डी लाए तबार पौड़ी।

प्रतहार तो ऐसा राजा श्री गोपाल जांचे कार गान गंधर्व रिखी बपड़े टाडिया गावंत अच्छा।

भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नागर जना मेरी जात बखियात चमारंग हृदय राम गोविंद गुण सारंग हरहाओ सुरसरी सरल किरत बारनी रे संत जन करत नहीं पानंग तुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत न होए आनंग तर तार अपवित्र कर मानिए रे

तृपतार अनक स्वांग काशे पेह धारी जैसो सा तैसो दृष्टारी कहन कहावन सगल जंजार नानक दास सज करणी सार कानड़ा मोहल्ला पंजवा तेरो जन हर जस सुन तो मायो रहाओ मने प्रगास पे प्रभ की शोभा जद कद पेखो आयो सब ते परे परे ते ऊंचा गहर गंभीर अथायो ओत पोत मिलो भगतन कौ जन स्यों परदा लायो गुर प्रसाद गावे गुण नानक सहज समाज समायो कानड़ा मोहल्ला पंजवा।

आवत जात रहे श्रम नासे सिमरत साधु संग पतत पुनीत होए खिन पीतर पार ब्रह्म कै रंग जो जो कथै सुने हर कीर्तन ताकि दुर्मत नास सगल मनोरथ पावे नान पूर्ण होवे आस तानड़ा मोहल्ला पंजवां साध संगत निधर को नाम संग सहाई जी के काम रखाओ संतरेन नित मज्जन करे जन्म जन्म के किल बिख हरे संत जना की ऊंची बानी सिमर सिमर तरे नानक प्राणी कानड़ा मोहल्ला पंजवां साधु हर हरे गुण गाए मान तन तन प्राण प्रभ के सिमरत दुख जाए रखाओ ई पूत कहां लोभ आवे एक स्यों मन लाए महा पवित्र संत आसन मिल संग गोविंद त्याय सगल त्याग शरण आयो नानक लेहु मिलाए कानड़ा मोहल्ला पंजवां पेख पेग बिसाओ साजन प्रभ अपना एकांत रखाओ आन दा सुख सहज मूर्त तिस आन नाही भांत सिमरत एक बार हर हर मिट कोट कसमल जांत गुण रवंत दुख नास है रिद पयंत सांत।

आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम ते आवन, नाम हमारे प्राण आधार है। हरहाओ नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवार है। हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पाव जल विखम नाम हर तार है। अगम पदार्थ लाल अमोला, पयो प्राप्त गुर चरणार है। कहो नानक प्रापय कृपाला, मगन पय हियर दरसार। कानड़ा महला पंजवा, साजन मीत सुवामी नेरो, पेखत सुनत सबन कै संगे, थोरे काज बुरो कै फेरो। अरहाओ ना बिना जेतो लपटायो, कशु नहीं नाही कज तेरो। आगे दृष्ट आवत सा प्रगट, ई गाम होयो परम अंधेरो। अटक्यो सुबंता संग माया, देवन हार दा तार बसेरो। कहो नानक एके पारु सौ, बंधन काटन हार गुर मेरो। कानड़ा महला पंजवा, बिखे दाल।

अबर ओट में कोई न सूझे, एक हर की ओट में आस, क्या दीन करे अरदास, जो सब कड़ प्रभु निवास, प्राभ चरणन की मन प्यास, जन नानक दास कहित है तुमरा, हौ बल बल सद बल जास, कानड़ा मोहल्ला पंजवां कर छेवां, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, जगत उदाहरण नाम प्रे तेरे, नाम निध नाम निदान हर केर, हर रंग रंग रंग अनुपेर, काहे रे मन मोहे मगनेर, नयनो देख साध दरसेर, सो पावे जिस लिखत ललेर रहाओ, सेवो साध संत चिरनेर, बांचो तूर पवित्र करेर, अड़सड़ मज्जन मैल कटेर, सा सा त्याव हो मुख नहीं मोर, किस संग न चाले लाख करोर, प्रभु जी को नाम अंत पकरोर, मनसा मार एक निरंकेर, सगल त्याग है पाओ दूजेर, कामन कहां हां गुण प्रे तेर, वर्ण सा को एक टोलेर, दर्शन प्यास बहुत मन मेर।

अंधकार सागर पतत मोह मान अंध बिकल माया संग तंद कर गए प्रभ आप काढ़ हो राख लियो गोविंद राय अनाथ नाथ सनाथ संत।

ओंकार सदगुर प्रसाद जप मन राम नाम सुख पावे गो ज्यो ज्यो जपे तवे सुख पावे सदगुर सेव समावे गो रहाओ भगत जिना की खिन खिन लोचा।

गुरु है सदगुर, मैं सदगुर शरण मिलावे गो। कानड़ा मोहल्ला चौथा, मान गुरमत चाल चलावे गो। जो मैगल मस्त दीजे तल कुंडे, गुर अंकस शब्द दृढ़ावे गो। रघाओ चलतो चले चले दह दह दिस, गुर राखे घर लिवलावे गो।

नारायण सगले जंत पजो गोपालय जब तब संजम पूर्ण कालय नित पजो स्वामी अंतरजामी सबल जन्म सबाया गोविंद गायगे नित त्याई है प्रवाण सोई आया जब ताप संजम हर घर निरंजन गोविंद तन संग चालय बिनवंत नानक कर दया दीजे हर रतन बंद उपालय मंगल चार चोज आनंदा कर कृपा मेरे परमानंदा प्रमिले स्वामी सुख गामी इस मन की पुनिया बजी बधाई सहजे समाई बौड़ दुख ना रुनिया ले कंठ लाए सुख दिखाए बिकार बिन से मंदा बिनवंत नानक मिले स्वामी।

जप मुख उजला प्रधान नानक गुर गोविंद हर जित मिल हर पाया नाम पौड़ी। तू आपे ही सिद्ध साधको तू आपे ही जुग जोगिया तू आपे ही रस रसियड़ा तू आपे ही भोग भोगिया तू आपे आप वर्तदा तू आपे करे सोहोगिया। सत संगत सदगुर तन तनो तन तन तनो जित मिल हर बुलग बलोगिया। सब कहो मुखो।

पाप कटोना तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत मुख वड वड भाग वडोना सब त्यावो आज सते जुगाद सते प्रतख सते सदा सदा सते जन नानक दास दसोना सरोक मोहल्ला चौथा हमरे हर जग जीवना हर जप्यो हर गुरमंत हर अगम अगोचर अगम हर हर मिलया आए अचिंत हर आपे कड़ कड़ वर्तदा हर आपे आप बेअंत हर आपे सब रस भोगदा हर आपे कवला कंत हर आपे पिखिया पाएदा साब सिट पाई जी जंत।

हर प्रसज्जन नाम हर मैं मनत नाम शरीर सब ऐसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन घर धीर पौड़ी हर उत्तम घरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जप दे हर घर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार समाले सब जी जंत हर वसे निट सब जौला सो बूझे जिस आप बुझाए सी जिस सदगुरु पुरख प्रसौला सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समोला सलोक महला चौथा सुत्या हर प्रवचेत मान हर सहज समा समाए जन नानक हर हर चाओ मान गुर तुठा मेले माए महला चौथा हर इकस स्थिति पिरहड़ी हर इको मेरे चित जन नानक एक आधार हर प्रभ एक सते गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजया आनंद मूल राम सब देखया गुर शब्दी गोविंद गजया आद जुगाद वेश घर एको मत गुरमत घर प्रभ भजया हर देव हो दान दयाल प्रभ जन राखो घर प्रभ लजया सब धन कहो गुर सदगुरु गुर सदगुरु जित मिलघर पड़दा कजया सलोक महला चौथा भगत सरोवर उछल सुबर परे वहन जिन्ना सदगुर मन्या जन नानक वड भाग लहन महला चौथा हर घर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर घर अगम अगाध हर जान केत विद मिले मिलाहे हर घर जस जपत जपंत जान एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लेहो लड़लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर हुए सो वर्णिए तिस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सदगुर चढ़ साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सदगुरु जित मिल हर लेखा लिखा सलोक महला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिगे सदगुर पाए हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिनी आराध्या जिन मस्तक लिखिया थुर पाए हर दरगे जन पै नाइयन जिन हर मन वस्या आए जिन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर हर नाम निधान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया

तन सुहावी सफल घड़ी जित हर सेवा मन पानी हर कथा सुनावो मेरे गुर सिखो मेरे हर प्रभ अकथ कहानी क्यों पाइए क्यों देखिए मेरा हर प्रभ सुगड़ सुजानी हर मेल दिखाए आप हर गुर बचनी नाम समाणी तिन विटो नानक वारिया जो जपदे हर निर्बाणी सलोक महला चौथा हर प्रवृत्ते लोयना ज्ञान अंजन गुर दे मैं प्रभ सज्जन पाया जन नानक सहज मिले महला चौथा गुरमुख अंतर सांत है।

एकना मेल गुरु तिन जीता, तारू तुम गर प्रव नाम है, गुर भजन सुभागे लीता, दुख दाल दिल सबो लह गया, जान नाओ गुरु हर दीता, सब सेवो मोहनो, मन मोहनो, जग मोहनो, जिन जगत्यो पाए सबो वस कीता, सलोक महला चौथा, मन अंतर हो में रोग है, ब्रह्म फूले मनमुख दुर्जना, नानक रोग वन्याय, मिल सदगुर साधु सज्जना, महला चौथा, मन तन ताम सगारवा, जां देखा हर नैणे, नानक सोपरा मैं मिले, हो जीवा साध सुने पौड़ी, जगन्नाथ जगदीशर करते, अपरंपर पुरख अतोल, हर नाम ते आवो मेरे गुरसिखो, हारूतम हर नाम अमोल, जिन त्याया हिरदे दिन सरात, ते मिले नहीं हर रोल, वडभागी संगत मिले, गुर सतगुर पूरा बोल, सब त्यावो नर नारायणो, नारायणो, जित चूका जाम झगड़ चघोल, सरोक महला चौथा, हर जन हर हर चौंदिया, सर संध्या गावार, नानक हर जन हर लिव उबरे, जिन संध्या तिस फिर मार, महला चौथा, अखी प्रेम कसाइया, हर हर नाम पिखन, जे कर दूजा देख दे, जन नानक कढ़ चन पौड़ी, जल थल मही अल पूरनो,

गोपाल गुण प्रगट सब लोई। सलोक महला चौथा। गुरमुख मिले से सजना हर प्रपाया रंग, जन नानक नाम सलाहे तू, लुड़ लुड़ दर गए।

बाद रामा राम रामे अंत न पाया, हम बारक प्रदपारे तुमरे, तू बड़ पुरख पिता मेरा माया। अरहाव हर के नाम असंग अगम है, अगम अगम हर राया, गुणी ज्ञानी सुरत भो कीनी, एक तिलनी कीमत पाया। गोविंद गुण गोविंद सद गाव है, गुण गोविंद अंत न पाया, तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी, बो जपगे था न पाया। उस्तद करे तुमरी जनमाद हो, गुण गावे हर राया, तुम जल निध हा मीने तुमरे, तेरा अंत न कतहु पाया। जान कहो कृपा करो मसूदन, हर देवो नाम जपाया, मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है, जन नानक गुरमुख पाया। कल्याण महला चौथा, हर जन गुण गावत हसया, हर घर भगत बनी मत गुरमत, तुर मस्तक प्रव लिखिया रहाओ। गुर के पाग सिमरो दिन राती, मन हर घर हर बसया, हर घर हर कीर्त जग सारी, घस चंदन जस कसया। हर जन हर घर हर लिवलाई, सब सागत खोज पया, ज्यो किरत संयोग चल्यो नर निंदक, पग नागन छोए जलया। जन के तुम घर राखे स्वामी, तुम जुग जुग जन रखया, कहां पया दायत करी बखीली, सब कर कर चर परया। जेते जी जन प्रव किए, सब कालय मोह ग्रसया। हर जन हर हर हर प्रव राखे,

प्रभ मोहे कब गल लावे गे रहाओ, हम बारक मुग्ध एयान पिता समझावेंगे, सुत खिन खिन पूल बेगार जगत पिद पावेंगे, जो हर स्वामी तुम देहो सोई हम पावेंगे, मोहे दूजी ना ही ठौर जिस पे हम जावेंगे, जो हर पावे भगत तिना हर पावेंगे, ज्योति ज्योत मिलाए ज्योत रल जावेंगे, हर आपे होए किरपाल आप लिवलावेंगे, जन

रामो राम रवीजे, साधु साध साधन नीके, विल साधु हरं की जय रघाओ। जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करीजे, कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थमन को थम।

साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रहे ना सकीजै। ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है खेन जल बिन फूट मरीजै। महा अपाग अपाग है जिनके जिन साधु तूर न पीजै। तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझे डंड तरमरा एका दीजे। सब तीर्थ वर्त जग

पाई। सदा जल निर्मल मैल ना लागे, सच नाम चित लाई। सुख सीगार सतगुरु दिखाया, नाम वड्डी वड्याई। अखुट भंडार भरे कदे तोट ना आवे, सदा हर सेवो पाई। आपे करता जिसनू देवे, तिस वसे मन आ।

बनाए बहुरंगी सिद्ध उपाए प्रखेल किया कर कर वेख करे कराए सर्ब जिया नू रिजक दिया कली काल में रव्या राम घाट घाट पूरया प्रभ एको गुरमुख प्रगट हर हर नाम रखाओ गुप्ता नाम वरते विच कल युग काट काट हर भरपूर रहया नाम रतन तिना हिरदे प्रगटया जो गुरसरण आई पज पया इंद्री पंच पंचे वसयाने खिमा संतोख गुरमत पावे तो तन तन हर जनवड़।

तो नरक पर एको सब एको प्रवर्त तब एक स्ते उत्पत चल नानक गुरमुख मेल मिलाए गुरमुख हर हर जाए रलै।

लेव उन मन नाम लगान, अमृत रस पिया गुर शब्दी, हम नाम इटो कुर्बान। हमरे जग जीवन हर प्राण, हर उत्तम अंतर पायो, गुरमंत दियो हर कान रखाओ। आभो संत मेरो मेरे पाई, मिल हर हर नाम वखान। कित विद क्यों पाइये प्रभु अपना, मोको करो उपदेश हर दान। सत संगत में हर हर वसया, मेरे संगत हर गुण जान। वड़े भाग सत संगत पाई, गुर सतगुर परस भगवान। गुण गावे प्रभु अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान। जन नानक गौ गुर कृपा धारी, हर नाम दियो खिनदान। प्रभाती महला चौथा, उगवे सूर गुरमुख हर बोले, सवरैन संभाले हर गाल। हमरे प्रभ हम लोच लगाई।

गुण गावत मन होए आनंद, आठ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कर मल जाहे, सिद्ध गुर की हम चरणी पाहे, सुमत देव हो संत प्यारे, सिमरो नाम मोहे निस्तारे रखाओ, जिन गुर कहया मार्ग सीधा, सगल त्याग नाम हर गीदा, तिस गुर कह सदा बल जाइए, हर सिमरन जिस गुर ते पाईए, बूढ़ प्राणी जिन गुरे तराया, जिस प्रसाद मोहे नी माया, हलत पलत जिन गुरे सवारिया।

आर ब्रह्म आराधी अपने सदगुरु कै बल जाय। आगम अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाईए, लहा खाट होइए धनवंता अपना प्रभु ते आईए। आठ पैर पार ब्रह्म ते आई, सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ। पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती मोहल्ला पंजवां, सिमरत नाम किलब सब नासे, सत्य नाम गुर दी नीरासे, प्रभु की दरगह शोभा बंते, सेव सेव सदा सोहंते। हर हर नाम जपो मेरे पाई, सगले रोग दोग सा बिनसै,

दुख पग तरन पालन जोग सतगुर भेटै जमना तेटै जिस तुर होवे संजोग रैन दिनस त्याय हर हर तजो मन के परम साध संगत हर मिले जिस है पूर्ण कर्म जन्म जन्म विखाद बिनसे राख ली ने आप मात पिता मीत पाई जन नानक हर हर जाप प्रभाती महला पंजवां विपास पड़ताल।

एको कर जान एहा मत शब्द है सार वे दुविधा माथे पवे शार करणी कीर्त गुरमत सार संत सभा गुण ज्ञान विचार मन मारे जीवित मर जान नानक नदरी नदर पछाण।

सेवंत सूरा चदर दिसै बेखम थान बसंत पूछै नै सिमरंत मरणं कदांचै भवंत आग्या भगवान पुरख है नानक कीटी सास अकरखते सबदंग रतन हितंग माया कीर्तन कली कर्म कृतवा मिटंत ततरागत परम मोहं भगवान रमणं सर्वतर्थानें दृष्ट तोयं अमोघ दर्शनं बसंत साध रसना हर हर हर हरे नानक प्रियं जाप जपना पटंत रूपं पटंत दीपं पटंत रव ससियर नखेत्र गगनं पटंत बसदा गिर तरसे खंडं पटंत ललना सुप्रात हीतं पटंत कनक मानक माया स्वरूपं नैक टंत केवल गोपाल अच्युत अस्तरंग नानक साध जान नै बिलंब तरमं बिलंब पापं दरणत नामं तजंत लोभं तरण संतं किलभकनासं प्राप्तं तर्म लखेण नानक जे सो प्रसन्न माधव मृत मोहं अल्प बुद्धिं रचंत बनता विनोद साहं जौवन भैक्रम कनक कुंडल विचित्र मंदर सुभंत वस्त्रा इत्यंत माया व्याप्तं हे अच्युत शरण संत नानक जन्मता मरणं हरखंता सोगं भोगंता रोगं ऊचंता नीचं नाना सो मूचं राजता मानं अवमानता हीनं परवृत मार्गं वर्तंत विनाशनं गोविंद भजन सा संगेन अस्तरंग नानक भगवंत भजन हासनं कृपं तहारियं मतद ज्ञानं भगसीद बुद्धा कुशलथानं दिस्यंत रिखियं त्यागमानं शीतलंत हृदयं दृढ़ संत ज्ञानं रहंत जन्मं हरदर्शलीना भजंत नानक शब्द बीणा तहंत बेदा गुणंत गुनिया सुनंत बाला बहुविध प्रकारा दृढ़ंत सुविद्या हर हर कृपाला नामदान जय चंत नानक दैन हार गुर गोपाला नै चिंता माल प्रत नै चिंता कछ लोक कहे नै चिंता बनता सुध मीत है प्रवृत माया संबंधन है दयाल एक भगवान पुरख है नानक सर्व जीव प्रतपालक है अनित वितंग अनित चितंग अनित आसा बहुविध प्रकारं अनित हेतंग अहं बंधं परम माया मलनंग विकारं तिरंत जो अनेक जुषरागन नै सिमरंत मलीन बुद्धिं हे गोविंद कर्तमया नानक पद उदाहरण साध संगमय ग्रंथ गिर पद पातालं जलंत दे दीप वैश्वंतर महंत अघातोयं तुरंगं दुखंत गृह चिंता जन्म ताम मरणे अनक साधरंग न सिद्ध अते नानक अस्तंभं अस्तंभं अस्तंभं शब्द साध सुवजन होर दुखियं अनक हत्यं जन्म दारिद्रं महाबिखयादं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट भस्मं क्रोत अंधकार सिमरत प्रकाशं गुण रमंत अग खंडन रिद्व संत भय पीत दूत है कर्म करत महानिर्मल है जन्म मरण रहंत स्रोता

पूर्ण पुरख भगवान है, भगत वचल करुणामय है, घट घट बसंत वासुदेव है, पार ब्रह्म परमेश्वर है,

तम प्रखोतमं तब प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं परन पोखण करंत जिया विश्राम शादन देवंत दानं सिरजंत रतन जन्म चतर चेतना।

साध संग खल पंडित कंठ रमणी आराम राम माला हस ऊच प्रेम तारणी जीपन जो उत्तम श्लोक उदरणंग नयन नंदनी गुरमंत्र हीन अस जो प्राणी।

ज्ञानं हम दुख सुखं युगत निर्मल निर्वायरण दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहित है उपदेशं।

रमंत गुण गोविंद नित प्रतय तारण शरण स्वामी रामण सील परमेश्वर है करण कारण समर्थ है दान देत प्रापूर्ण है निराश आस करण सगल अर्थ आले है गुण निधान सिमरंत।

रामं नरक विश्रामं भोजोन्नी परमामण चेत हरणं त्रैलोक गम्यं जब तब सील विदारण अल्प सुख

नाना उपर्जते विख्यंत जीवं वस्यं क्रोत नृत्यं क्रोत जथा मरकट है अनक शासन ताड़ंत जम दूत है तब संगे अधवंग नर है दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रखया क्रोत हे लोभा लंपट संग सिर मोर है अनक लहरी कलोलते धावंत जी आ बहु प्रकारं अनक पांद बोडोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांधव नच मात पिता तव लज्जया अकरणं क्रोत अखात खाद्यं असाज्यं सार समझया त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञाप्त नानक हर नर हर हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजंत शत्रं दृढ़ंत अनक माया विस्तीर्ण है अवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगण है परम भयान उद्यान रमणं मां विकट असाध रोगण है पैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे हे प्राणनाथ गोविंद है कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरण है करुणामय सब दुख हरो हे शरण जोग दयाल है दीना नाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय तिमरंत नानक राम दामोदर माधव है चरण कमल शरणं रमणं गोपाल कीर्तन है सार संगेण तरणं नानक महासागर पय दुत्र है सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्त काया रखिया परमेश्वर है

अपार गोविंद है बसंत साध हृदय अचुत बुझंत नानक बड़पागी है उदयान बसनंग संसारंग संबंधी स्वान सियाल खर है बिखम स्थान मन मोह मदरंग मां असाध पंच तस्तर है हीत मोह पय परम ब्राह्मणंग अंग फांस तीखिन कठन है पावक तो असाध कोरंग अगम तीर नय लंघन है भज साध संग गोपाल नानक हर चरण शरण उदरण कृपा कृपा करंत गोविंद गोपाल है सगलिंग रोग खंडन है सा संगेन गुण रमत नानक शरण पूर्ण परमेश्वर है श्यामलंग मधुर मानुखयंग हृदयंग भूम वायरण है निवंत होवंत मिथ्या चेतनंग संत सुवजन है अचेत मूड़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रते छिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रास्ते अचंत पुरख कुटंब लीला नेत आसा विख्या विनोद प्रमंत प्रमंत भोजन महारयो शरण नानक करणामय हे जेबे हे रसगे मद्र प्रिया तोयंग सत हदंग परम बादंग अवर तिथ है सुध अशरण गोविंद दामोदर माधव गर्भवंत नारी मदोर मतंग बलवंत बलाद कारण है चरण कमल न पजंत तरण समान तिग जन्मन हे पपीर का ग्रस्ते गोविंद सिमरण तो

हर जस लिखन ना जाए। कबीर जात जुलाहा क्या करे, हृदय बसे गोपाल। कबीर रमैया कंठ मेल, चूक है सर्ब जंजाल। कबीर ऐसा को नहीं, मंदर दे जराए। पंच उलर के मार के रहे राम ल्यो लाए। कबीर ऐसा को नहीं, त्यो तन दे वे फूक। अंधा लोग न जानई रहो कबीरा कूक। कबीर सती पुकारे चेचड़ी, सुन हो बीर मसान। लोग सुबाया चल गयो, हम तुम काम दान। कबीर मन पंखी पयो, उड़ उड़ दे दिस जाए। जो जैसी संगत मिले, सो तय सो फल खाए। कबीर जा को खोजते, पायो सोई ठौर। सोई फिर के तू पया, जा को कहता और। कबीर मारी मरो कुसंग की, केले निकट जो बेर। ओ चूले ओ चीरिए साक।

की मौज में रहो अंत अर आद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, तैबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख के कह कहो तय ना को पतियाए, हर जैसा तैसा उही रहो हरख।

कबीर दावे दज होत है निर्दावे रहे निशंक, जो जन निर्दावे रहे तो गने इंद्र सो रंक। कबीर पाल समोहा सरवर भरा पी न सके कोई नीर, भाग बड़े ते पायो तू पर पियो कबीर। कबीर प्रभाते तारे खिसे

चोर सहारे शब्द की, ताश गुरु में दास, कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़े, साई ना बहरा होवे, जां कारण तू बांग देहे, दिल की पीतर जोए, शेख सबूरी बहारा क्या हज काबे जाए, कबीर जाकी दिल साबत नहीं, ताको कहां खुदाए, कबीर अल्लाह की कर बंदगी, जे सिमरत दुख जाए, दिल में साई

का सफल फलंत पीर साधु संग प्राप्ति लिखिया हुए ललाट। मुक्त पदार्थ पाई है थाक ना अब घट काट। कबीर एक घड़ी आदि करी आदि हूं ते आद। भगतन से ती गोष्ट जो किन्ने सो लाभ। कबीर भांग माशली सुरा पान जो जो प्राणी खाहे। तीर्थ वर्त नेम किए ते सबे रसातल जाहे। नीचे लोयन कर रखो ले साजन कट माहे। स्वर्ग खेलो पीसो किसी लखावो नाहे। आठ जाम चौसठ करी

मैंडे कपड़े काला मैंडा वेश गुन ही परिया मैं फिरा लोक कहे दरवेश तत्ती तोय ना पलवे जे जल टुब्बी दे फरीदा जो डुहागन रब दी चूरेंदी चूरे जा कुआरी ता चाओ विवाही ता मामले फरीदा एहो पछोताओ वत कुआरी ना थी है कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज चिंजू बोड़न ना पीवे उड़न संधी डंज हंस उड़र कोदरे पया लोक वडारन जाए गहला लोक ना जानदा

फरीदा इट सराने पोए सवन कीड़ा लड़े ओ मास केतड़िया जुग वापरे एकत पया पास फरीदा पन्नी कड़ी सुवनवी टुटी ना गरलज अजराइल फरिश्ता कहे करनाठी अज फरीदा पन्नी कड़ी सुवन।

फरीदा महल सखण रह गए वस आया तल गोरा से निमाणिया बैसन रूहा मल आखी सेखा बंदगी चलन अज के कल फरीदा मौते दा बन्ना एवे दिस जो दरिया वे टाहा अगे दोजक तपिया सुनिए फूल पवे काहा एक नानू सब सोजी आई एक फिर दे वे परवाह अमल जे कीत्या दुनी वेच से दर

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंगुर प्रसाद सवैये श्री मुख बाक महला पंजवा आदि पुरख करतार करण कारण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल घट रहो बे आपे व्याप्त देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्व की रखिया करे आपे हर पत अविनाशी अवगत आपे आपे उत्पत एक तू ही एक है।

वर्धमान हो दिन प्रतनित आपत निकट बिखम जरी रे गुण हीन दीन माया क्रिम सिमर स्वामी एक करी कर गए लो कृपाल कृपा निध नानक काट प्रम परी रे मन मूस बिला में गर्भत करतब करत महामुगना संपद दोल चोल संग चूलत माया मगन प्रमत खुगना सुख बंता साजन सुख बंदप तासो मुह बड़े सो खना बोयो बीज अंग मम अंकर बीतत औद करत अगना मृत मजार सारमुख निरखत उंचत पुगत पूख पुखना सिमर गोपाल दयाल सत्संग नानक जग जानत सुपना एहन गेहन ने ना नीता माया मत कहां लो गारो शतरन पतरन चौर न चावर बैती जात हृदय ना बिचारो रतन असवन गज सिंघासन शिन में त्यागत नांग सिधारो सूर्न बीरन मीर न खान संग न को दृढ़ निहारो कोटन ओटन कोस न छोट करत विकार दू कर चारो मित्र ना पुत्र कलत्र साजन साख उल्टत जात बिरक की शारो दीन दयाल पुरख प्रापूरन छिन छिन सिमरो अगम अपारो श्री पदनाथ शरण नानक जान हे भगवंत कृपा करता रहो प्राण मान दान मग जो हुन हीत चीत दे ले ले पारी साजन सैन मी सुद पाई ताहू तेले रखी नरारी तामन पामन कूर कमान एवद करत औत तन जारी कर्म तर्म संजम सुच नेमा चंचल संग सगल बिदहारी पस पंखी बिरक स्थावर बोबद जोन प्रम्यो अद पारी किन पचसा नाम नी सिमरयो दीना नाथ प्राण पसारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कदकारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी ब्रह मादक शिव छंद मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तारण गगन आतफुन तावत सिद्ध मानुख देव अर दानव एक दलता को मर मन पावत प्रे प्राप्रीत प्रेम रस भक्ति हर जनता के दर्श समावत इसे त्याग आन को जाच है मुगदंत रस सगल कह जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत माया रंग बिरंग करत भ्रम मुख कूप गुबार परयो है एता गब आकाशना मावत विष्टा अस्त क्रिम उदर परयो है दैद ताए महा बिखिया कौ परतन छीन अज्ञान हरयो है जोबन बीत जरा रोग रस्यो जम दूतन डन मृत मरयो है अनक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख गर्त गरयो है प्रेम भगत उदरे से नानक कर कृपा संत आप करयो है गुण समूह फाल सगल मनोरथ पूर्ण होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख वर सर्व रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध माद मसर तृष्णा बिन सजाए हर नाम उचारी स्नान दान तापन सुज किरिया चरण कमल हृदय प्रोतारी साजन मीत सखा हर बंधप जी तान प्राण आधारी ओढ़ गई स्वामी समर्थ है नानक दास सदा बलिहारी आवद कट्यो ना जात प्रेम रह चरण कमल संग दावन बंध्यो ना जात विदे मन दर्श मग पाप कजरयो ना जात रहो जन तूर लग नीर न साक्ष बोर चले घर पंथ पाग नानक रोग दोख अगमोह छिदे घर नाम खग उदम कर लागे बो भाती बिचरे अनक सात्र बो खटुआ पसम लगा तीर्थ बो प्रमते सूखम दे बंदे बो जटुआ बेनगर भजन सगल दो पावत जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्कर करत सोम पाका अनक पांत फाटे कर थटुआ सवैगे महले पहले के एक ओंकार सदगुर प्रसाद एक मान पुरख त्याए बरदाता संत सहार सदा बिखियत ताज चरण ले हृदय बसावो तो परम गुरु।

आवो गुण परम गुरु सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सरे गावे गंभीर तीर मसागर जोगी जंगम ध्यान धरे गावे इंद्राद भगत प्रहलादक आत्मरा जिन जान्यो तब कलश जद गावो गुरु नानक राज जोग जिन मान्यो गावे जिन काद जुगत जोगेसर हर्ष पूर्ण सर्व कला गावे सनकाद साध सिधाधक मुन जन गावे अशरशला गावे गुण तोम अटल मंडल व भगत पाए रस जान्यो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मान्यो गावे कपलाद आद जोगेसर अपरंपर अवतार वरो गावे जम दगन परसरामेसर कर कुठार रग तेज हरेओ उदो अक्रूर बेदर गुण गावे सर्वात्म जिन जान्यो तब कर सुजत गावो गुरु नानक राज योग जिन मान्यो गावे गुण वर्ण चार खड़ दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंथ गुणा गावे गुण शेष सहजे बारस आद अंतले लाग तुना गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जान्यो कब कर सुजस गावो गुरु नानक राज योग जिन मान्यो राज योग मान्यो बस्यो निर्वैर हृदंतर सिट सगल उदरी नाम ले तरयो निरंतर गुण गावे सनकार आज जिन का जुग है लग तन तन गुर तन जन्म सक्यथ पलो जग पाताल पुरी जय कार तुन तब जन कल वखाण्यो हर नाम रसक नानक गुर राज योग तय मान्यो सजुग तय मान्यो छल्यो बल बावन पायो त्रेते तय मान्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्र सैन कौ राज अपहे भगते जन दियो कलजुग प्रमाण नानक गौर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अबचल अटल आद पुरख फुरमायो गुण गावे रविदास भगत जय देव त्रिलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बेण गुण रवे सहज आत्म रंग माने योग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर ना जाने सुख देओ प्रीखेत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कलश जस नानक गुर नित नवतन जग छायो गुण गावे पायाल भगत नागाद पोयंगम महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम गुण गावे मुन व्यास जिन बेद व्याकरण विचार ब्रह्मा गुण उचर जिन हुक्म सब सिट सुवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाण्यो जब कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन मान्यो गुण गावे नवनाथ तन गुर सास समायो मां धाता गुण रवे जेन चक्र वह कहायो गुण गावे बलराव शब्द पाताल बसंतो परथर गुण उच्चर सदा गुर संगर हंतो दूरबा पुरूरो अंगर गुर नानक जस गायो कब काल सुजस नानक गुर काड़ काड़ सहज सुमायो सवाईगे महल्ले दूजे के एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद सोई पुरख तन करता कारण करतार करण समर्थो सदगुरु तन नानक मस्तक तुम तरयो जिन हथो ता तरयो मस्तक हथ सहज आम्यो उठो छज सुर नर गण मुन बोझ अगाज मारो कंटक काल गर्ज ताव तलियो बरज पंच पूत एक कार राख ले समाज जगजीतो गुरुद्वार खेले संत सार रथ उन मन लेव राख निरंकार कौ कीर्त कलसहार सप्त दीप मजहार लैणा जगत्र गोर परस मुरार जाकी दिष्ट अमृत धार काल खन उतार तेमर अज्ञान जागे दर्श द्वार ओ जो सेवे शब्द सार गाखड़ी बिखमकार ते नर पव उतार किए निरपार सत संगत सहज सार जागी ले गुर बिचार निमरी पूस दीव परम प्यार कौ कीर्त कलसहार सप्त दीप मजहार लैणा जगत्र गुर परस मुरार
तय तो दृढ़ो नाम अपार, बिमल जास बथार, साधक सिद्ध सो जान जिया को आधार, तू ता जनक राजा अवतार, शब्द संसार सार, रह जगत्र जाल पद्म विचार, कल्प तार रोग बेदार, संसार ताप निवार, आत्मा त्रिप्त तेरे एकले अवतार, कौ कीर्त कलसहार, सप्तदीप मझार, लहना जगत्र गोर परस मुरार, तय ता हदरत पायो मान, सेव्या गुर परवान, साध अजगर जिन किया उन्मान, हरगर दर्श समान, आत्मावंत ज्ञान, जानी अकलगत गुर परवान, या की दृष्ट अचल ठान, बेमन बुद्ध सुथान, पैर सील सुनाहो सगत बिदार, कौ कीर्त कलसहार, सप्त दीप मजहार, लैना जगत्र गुर परस मुरार, दृढ़ धरत तम हरन, दैन अगपाप प्रनासन, शब्द सूर बलवंत, काम अर क्रोध बेनासन, लो मुवस करन, सरन जाचक प्रतपालन, आत्मरत संग्रहण, कैन अमृत कल ठालन, सदगुरु कल सदगुर तिलक, सत लागे सो पैतर, गुर जगत फिरन सी अंगरो, राज योग लेना करे, सदा आकर लिवरे, करन सु इच्छा चार है, द्रम सपूर जो निवे, खवे कस बेमन बीचार है, ए तत जान्यो, सर्वगत अलख बिडानी, सहज पय संचियो, किरण अमृत कल बाणी, गुरगम प्रमाण ते पायो, सत संतोख ग्रहज लयो, हर परस्यो कल सुमुलवे, जन दर्शन लेने पयो, मन विश्वास पायो, गैर गो हदरथ दियो, गल नाता नठ्यो, अम्यो अंतरगत पियो, रिद विकास जाग्यो, अलख कल तरी जुगंतर, सदगुर सहज समाध, रवे ओसा मान निरंतर, उदारो चित दार्द हरन, पेखंते कमल त्रसन, सद रंग सहज कल उच्चर, जय जंपो लहने रसन, नाम अवखद, नाम आधार आर, नाम समाध सोख, सदा नाम निशान सोख, रंग रतो नाम स्यो, कल नाम सुर नरे बोह, नाम परजन पायो, सब प्रगट्यो रव लोए, दर्शन परसे है गुरु के, आरसड मज्जन होए, सच तीर्थ सच स्नान, अर भोजन पाओ सच, सदा सच पाखंत सोह, सच पायो गुर शब्द, सच नाम संगति बोह, जिस सच संजम वर्त सच, कबजन कल वखाण, दर्शन परसे है गुरु के, सच जन्म परवान, अमेदृत शुभ करे, हरे अग पाप सकल माल, काम क्रोध अर लो मोह, वस करे सबे बाल, सदा सुख मन वसै, दुख संसार है खोवे, गोर नाम नदरी आओ, जन्म हम कालख तोवे, सो कहो टल गुर सेवी है, अहे निस